0: जीवन ज्योत जले। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भोर सुहानी में। हर नई सुबह हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी का हर दिन एक नया मौका है मुस्कुराने का, सीखने का और आगे बढ़ते जाने का। और आगे वही बढ़ता है जो सकारात्मक सोच लेकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि मुश्किलात हर शख्स के जीवन में बार बार आती हैं, लेकिन वही कामयाब होता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है जो बस चलना जानता है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अपनों का साथ देते हुए, अपनों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए। अगर दिल में उम्मीद हो और होंठों पर मुस्कान हो तो मुश्किलें आसान हो जाती है और रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। बीती हुई बातों को रुखसत कीजिए, पीछे छोड़िए और आज की सुबह का इस्तकबाल पूरे हौसले और यकीन के साथ कीजिए, क्योंकि जो इंसान जिंदगी का गीत गुनगुनाता है उसे गुनगुनाना नहीं छोड़ता, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। गाते हुए गुनगुनाते हुए उसकी राह में खुशियाँ खुद ब खुद दस्तक देने लगती हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म से किशोर कुमार साहब और मनहर उदास।
1: आकाशवाणी राउरकेला समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी सकाळ 5:40।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स

0: पिलर वन है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी राउरकेला समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी रे सकाल 6:05 आसंतु सुनिबा भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना सुनिबा। नमिता अग्रवाल कंठरू यह भक्ति गीतटी गीत रचना करिसंती गुरुकृष्ण गोस्वामी।

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त

एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा अथ वार्ता केंद्रीय मंत्रिमंडलेन भारतस्य सेमीकंडक्टर इति परिकल्पना निर्माण परिवेशस्य सुदृढ़ीकरणाय पंचशताधिक सप्तविंशति सहस्राधिकैक लक्ष कोटि रूप्यकाणां विनियोगेन सेमीकॉन 2.0 इत्येषा योजना अनुमोदिता। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः एतान् मंत्रिमंडल निर्णयान् उद्घोषितवान्। असौ अवदत् यत् सेमीकॉन 1.0 इति योजनायाः सफलताम् अनुवर्तमाना एषा योजना भारतं वैश्विकं सेमीकंडक्टर इति केन्द्रं स्थापयितुं प्रशासनस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां द्योतयति। मंत्रिमंडलेन पंचशताधिक द्विषष्टि सहस्र कोटि रूप्यकाणां विनियोगेन चलदूरभाष विनिर्माण योजना अपि अनुमोदिता। एवमेव उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगरे मार्ग संयोजनस्य सुदृढ़ी

0: करणाय यातायातावरोधस्य न्यूनीकरणाय यात्रा समयस्य च संक्षेपणाय द्वे उन्नत मार्ग परियोजने अपि अनुमोदिते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः विश्वासं व्यक्तवान् यत् भारत यूरोपीय संघयोः व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनेन द्वयोः पक्षयोः सहकार्यम् अधिकं सुदृढं भविष्यति। ब्रुसेल्स नगरे सम्पन्नस्य तृतीय भारत यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् असौ अवदत् यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः सुरक्षा रक्षा सहकारः अथ गमनागमन रूपरेखा इत्येतेषां माध्यमेन विकसितः सहयोगः अग्रे अपि प्रवर्धिष्यते।
1: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
0: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त व्यापार सन्धिं निष्पक्षं न्यायसंगतं संतुलितं च निरूप्य अवदत् यत् एषः सन्धिः उभय देशयोः सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति। भारतीय निर्वाचनायोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति। दिल्ली कर्णाटकयोः मतदान केन्द्रस्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य नवविंशति दिनांक पर्यन्तं निर्धारितमासीत् अधुना आगामि मासस्य अष्टम दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामि मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायां जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम् अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी राउरकेला समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी सकाळ 7:00 तबे आसंतु श्रोता बंधु सुनिनेबा आजिर अधिवेशन रे प्रचलन हेबाकु थिबा कार्यक्रमर संक्षिप्त सूचना। सकाळ 7:25 प्रचार करिबो पवित्र रथयात्रा उपलक्षे ओडिया भक्तिगीतर कार्यक्रम परे सकाळ 7:30 शुणिबा पुरीरे अनुष्ठित हेउथबा प्रभु श्रीजगन्नाथंक पवित्र रथयात्रार सीधा प्रसारण आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। संध्या 7:30 प्रचार करिबो कृषक भाईबंधुंक उपलक्षे कार्यक्रम किसान बाणी। आजर विषय रहिछि खरीफ धान फसल परिचालना। एने आलोचना करिछन्ति डॉक्टर मनोज कुमार जेना सीनियर साइंटिस्ट सोयल केपीके किरे सुंदरगढ़। कार्यक्रम को प्रयोजना करिछन्ति बसंत कुमार स्वाई। राति 8:00 प्रचार करिबो प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग क्रमरे शुणिबा 1329 भाग। राति 8:30 प्रचार करिबो हिंदी कथाचित्र गीत कार्यक्रम सिने संगीत। राति 10:00 शुणिबा गीतनाट्य श्री गुंडीचा रचना ओ प्रयोजना शारदा प्रसन्न नायक संगीत भुवनेश्वर मिश्रा।

जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्व पापहर मुख्य दायक ए पुण्यमय श्रीक्षेत्र अनुष्ठित होता ए पतित पावन रथजात्रार धारा बरणी शुणापी आम राज्यर पुरपल्ली तथा विश्वर कोण अनुकोण से आग्रह सहित अपेक्षा करगणित प्रिय श्रोता बंधु मान पुणी थे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वर्षकर बहु प्रतीक्षित मुहूर्त एवं उपगत हो सबुआड़े उत्कंठा उन्मादना एवं उत्साह भूमि भूमा पर्यंत समस्ते चलचंचल एक अपूर्व उत्सुकता और भक्तिक आवेगरे समस्त दृष्टि निबद्ध नीलकंदर उपरे भक्त दर्शन करिवे महाप्रभु को, महाप्रभु दर्शन करिवे भक्त को। आबाल वृद्ध वनिता आज जे भी महाप्रभुंकर दिव्य लीला दर्शन करने बड़ दाण्ड में उपस्थित होती समस्त असामान्य श्रद्धापूर्ण भक्ति भाव विभोर चलबार रहीबार ठेला पेला सहबार पाद छिंडी जीवार वर्षार तिंतार समस्त कष्ट आज तुच्छ हो जाए जीवन रे परम प्राप्तिर बेल जत आगत से कौ कष्ट अटक भक्त को श्रीक्षेत्र तो स्वाभाविक भाव में प्रबल भक्तिमय परिवेश थाए ता सांग को सचराचर विश्व आज भक्तिमय समस्ते जपरि महाप्रभु को धारण करने निज हृदय सिंहासन को सजाइबार लगी महाप्रभु पाखे आम प्रार्थना से विराजंतु प्रत्येक हृदय सिंहासन आउ अल्प समय व्यवधान प्रतीक्षार फल मीठा श्रोताबंधु आम समस्ते से स्वाद पाइबा जानते श्रोताबंधु विगत 452 वर्षर इतिहास रे विभिन्न कारण 32 थर महाप्रभु रथजात्रा हो पारिना किंतु 1736 मसीहा परठारु ए पर्यंत ए जात्रा निरवच्छिन्न भाव में चली एपरिक ओडियांक भाग्य केते टाण एवं महाप्रभुंकर केते करुणा देखंतु विश्विक महामारी करोनार कोकुआ भय काल रे भी महाप्रभु रथजात्रा करेले। हाँ श्रोता बंधु आपण को आउ गोटे सूचना देवा चाहिए ताहा हला आकाशवाणी 90 वर्ष रे पदार्पण करी आम देश रे उत्सव मनाऊ ए 90 वर्ष रो महामूल्य उपलब्धि सहित जोड़ी हो जाइछि आकाशवाणी कटक पक्षर आरंभ होइतिबा रथजात्रार धारा बरणीर 79 वर्ष 1948 रु 2026 एटी होची 79तम वर्ष कुआडे अतीत को चाहिले आखि पाऊ नाही भारत स्वाधीन हबार परवर्ष यही धारा बरणी आरंभ होता आम भितर अनेक से जन्म भी हो नथिबा ये मध्य आकाशवाणी कटक आउ एक महार्ग उपलब्धि जिते इलेक्ट्रॉनिक माध्यम गणमाध्यम आसतु आकाशवाणी आकाशवाणी तार विकल्प नाही तार भाष्यकार माने विद्वान रुचिशील संयत एवं श्रोतांक पाखरे प्रतिबद्ध इतिहास और शास्त्रर तथ्य महाप्रभुंकर लीला और महिमा ही आकाशवाणी धारा बरणीर आधार श्रोतांकर आकाशवाणी उपरे थिबा अखंड विश्वास आमर समस्त भाष्यकार मानंकु प्रति पदे पदे सतर्क करुछि संयत करुछि एही दायित्व बोध को धारण करी आमर धारा बरणी प्रदान करिबा पई प्रथम केन्द्र राधा वल्लभ मठ उपरे मो सहित उपस्थित अछंती डॉक्टर नरेश चंद्र दास डॉक्टर कल्याणी नंदी एवं श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय उपरे आमर द्वितीय केन्द्र उपरे अछंती डॉक्टर हरिहर कानुनगो एवं प्रताप त्रिपाठी आम समस्त महाप्रभु पाखे प्रार्थना से स्वयं लीलार आसुंची आम बाणी रे स्वयं प्रकाशित हूँ आपण मन को हृदय को प्रस्तुत करने कि भावर कथा आकाशवाणी प्रतिबद्धता तथा कहवापर एवं प्रत्यक्ष भाव देखुवा कथा आपण को कहूँ श्रीक्षेत्र पाणीपाग अत्यंत प्रतिकूल थिला आज सका आम जानतु आम सका 5 आसी य प्रथम केन्द्र में बसीचु धारा बरणी प्रसारण आरंभ हो 7:30 आम 2.5 घंटा आगु आसिक बसीचु देखु से आपड़ अनुमान करूँ जे श्रीक्षेत्र कि प्रकार सुरक्षा व्यवस्था कि प्रकार कटकणा 2.5 घंटा पूर्व आमको आसवाक पड़ा केन्द्र को आउ जो व्यवस्था अच्छी 5 बेले आम बाहर की आसला बेलू एत जोर।

0: ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଧାରା ଏ ବର୍ଷା ନୁହେଁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶାଳକ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରଥ ପଥ ଏବଂ ଦେଉଳ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଆମର ରହିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଥ୍ ଯାହା କରାଯାଇଛି ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ। ସେ ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଥ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଡକ୍ଟର ହରିହର କାନୁନଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପାଖ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ସେପଟେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ,
1: ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ କଲ୍ୟାଣୀ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଆଜିର ଏହି ପରମ ପାବନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଲକିତ କରୁଛି, ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସତେ ଯେମିତି ଏହି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଠୁଳିଭୂତ ହେଇଛି, ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଇଛି, ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସୁସଜ୍ଜିତ ତିନି ରଥ ବିଜେ ଖଳାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ରଥ ପଥ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟି କରାଉଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କୁ କହି, ଯେଉଁ ମୂଷଳଧାରାରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରୁ କହୁଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, କାରଣ ସିଏ ପରା ଏ ମର୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, କଥା କୁହା ଠାକୁର, ସିଏ ପରା କଥା କହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭାବ ଡୋରିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେହି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଠାକୁର କଳିଯୁଗରେ କେତେ ମହାନ।
2: ଶୁଣୁଥିଲି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଧାରାବିବରଣୀର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ପରେ ପରେ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
3: बारिश के पानी एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में।
6: K
5: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
6: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
5: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
7: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
8: एक प्रकार से PM जय अब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: ओडिशा के पुरी से हमारे

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, तीन शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देव विदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
2: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा।
3: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
4: रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
5: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।

0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है, सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है, जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है, अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कटक शंखक्षेत्र पुरी ठारे अनुष्ठित महाप्रभु श्रीजगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध पवित्र घोष यात्रार धारा बरणीर सीधा प्रसारण शुणवाई एवं आम आपण जाऊ श्रीक्षेत्र को।
3: आपण बड़ सुंदर भाव से सेठू आपणकर दृष्टिपथारूढ़ जहाँ जहाँ हूँ आपण से संपर्क आम श्रोता मान सूचना दूसरे आज रथजात्रा कथा आम आलोचना करुचु से गोटे गीत मोर मन पड़ू से गीत हूँ भिकारी बल गई आमर डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय एक कथाटी उठेले जोबले दुईटी जगह को आम देखु गोटे हूँ रोषघर उपर छात आ गोटे हूँ ये जो आपण को सिंह भेट मंडप सिंहद्वार दक्षिण पार्श्वरे जो मंडपटी अच्छी से नीलाद्री विजय दिन जो भेट मंडप से मंडप उपरे बहु पारा सेठी उपस्थित अच्छा एवं नरेश बाबू कहते जे समग्र विश्व जो लोक मैंने आसी देखापी आम हाँ आम श्रीक्षेत्र देखुले मूत बड़ देवर पारे से जो बड़देर पारा है कि सब बड़े बड़देवल उपर उड़ूले आज बड़दाण्ड में दृश्य देखापी से पारा मैंने आप आश्चर्य हे आप तो देखिपुर आमर शाब्दिक मध्यम कि आपतु पारा गुड़िक श्रृंखलित होकर बस कह कथा ना मानने सत्य जमीर एकम्र काम बड़दाण्ड को तीन टा रथ को सी चाहक बस हाँ मेली से मैंने सब बस सुंदर लगुच एक कथा देखिले जे पारा मान भितर कि प्रकार श्रृंखला ज्ञान प्रभु भर्ती कर देती जोटा आम मानक भी शिखबार अच्छी तेणु ये जो आ गोटे कथा आप देखूँ आपणकर।

0: संजोगी किरण हेब ये होचंदी से सुदर्शन महाप्रभु जे वर्षकरे आहुरी चारिथर मध्य मंदिर बाहर को आसी थांती गम्हा पूर्णिमा रे मार्कंड पुष्करणी के आसंती राधाष्टमी रे जम्मेश्वर मंदिर को आसंती कुमार पूर्णिमा रे अंगिरा आश्रम को आसंती आउ आजि होची से रथयात्रा जो रथयात्रा पतित पावनकर यात्रा रे भक्त सहित भगवान मिलन प्रथम सेतु भाव में वर्तमान सुदर्शन महाप्रभु आदर्शन महाजल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानी ना मुख्य दायक भक्त मान भर समस्त ज्ञान को परिहित कर समस्त ज्ञान को दूरीभूत कर भक्तिर भावना को अधिक अधिक तीव्र करने सुदर्शन महाप्रभु आज से चक्र आकार नहांती स्तंभ आकार तुलसी लगी होती राघव दास मठर प्रत्यक्ष जो तुलसी जो टोपर महाप्रभु लगे सुंदर भाव आस परिपाटी में चली दईता सेवक मान घंटुआ मान चली नृत्यांगना मान नृत्य आनंद होयकार ठाकुर पाखे नृत्य कर समर्पित कर प्रदर्शित कर समर्पित हो जाती परम ब्रह्म विष्णु आयुध जी स्नान पंडपर रत्न सिंहासन जगन्नाथ वामपाश्वर रही था किंतु आज माँ देवी सुभद्रा सहित शक्ति सहित जोग माया सहित संजोग सुदर्शन महाप्रभु रथारूढ़ एवं बाहुड़े से कर्म बेदर जन्म बेदी को जन्म बेदर यात्रा ये हूँ दस अवतार यात्रा ये हूँ पतित पावन यात्रा भाव बंधन यात्रा भावबोधि बांधि हो संसार समस्त प्राणी दुख कष्ट को दूर कर मन भितर ज्ञान को दूर कर पाप को मोचन कर मुख्य दवा निमंत मुख्यर क्षेत्र मुक्तिर क्षेत्र से मुक्तिर क्षेत्र चारमाल ये चारमाल नुहे भक्त मान हृदय से द्वार जो हृदय द्वार को उन्मुक्त कर वर्तमान माँ सुभद्रा दर्प दलन रथ जहाँ को कि मध्य कहुए पद्मध्वज रथ से रथर से कोलमंडन करने को सुदर्शन महाप्रभु विजय कर दईता सेवक मैने रथ चारमा दे अग्रसर होती घंटुआ मैने घंट को यही विराम दे पुणी चल चली जाऊँच सिंह द्वार दे से बैश पहाच दे प्रभु निकट में कारण आसुंट परा बलियार भुज आउ यहा पूर्वर मुकबाक चाहिए जे कलश जो तीन गोटी स्थापना करा कोठ सुहासिया सेवक माने रथ प्रतिष्ठा करी आसीबा परे जो तीन गोटी कलश से स्थापना कले जगन्नाथ जो कलश तीन गोटी ताला नभ आकाश एवं व्योम एवं जो पताकाटी लगेले ताला त्रैलोक्य मोहिनी पताका तीन भुवन को मोहित करी से पताका मोहित करने पताकाटी रहिला एवं बलभद्रंकर रथर जो तीनोटी कलश रहिले ताहले चंद्र सूर्य एवं विद्युत एवं तांकर पताका बा नेतर नाम होची त्रिपुर सुंदरी तीन भुवनर जो सुंदर प्रतीक कारण प्रकृति सहित पुरुषर मिलन को ताहाकु से करिबा पई आउ सुभद्रांकर रथर जो तीनोटी कलश रहिला ताहला परा अपरा बैखारी एवं नेतर नाम होची नादंबिका माँ सुभद्रा तेबे चलंतु आमे पुणी नै जाउछु जगन्नाथंकर सेई श्रीमंदिर कार्यालय निकटरे आमर थिबा द्वितीय बूथ केन्द्र को जोठी अपेक्षा करिछंती भाव विहळता हई मनर भाव को परिप्रकाश करी आपण मानक पाखरे ए बडदांडर दृश्य को अत्यंत सुंदर भाव रे वर्णना करबा पई डॉक्टर हरिहर कानुंग महोदयंग निकट को जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सुंदर भाव रे वर्णना करूथले कल्याणी जे वर्तमान आयुध पुरुष चक्रराज सुदर्शन महाप्रभुंकर सही जो दिव्य ज्ञान जो रॉकेट बोली आम कहे आधुनिक जुगर रॉकेट बोली आम जहाँ को कहे से रॉकेट आसिकी आपणकर जगज्जननी कृपामयी माँ सुभद्रा ठाकुराणी दर्पदलन रथ में विराजमान कले कारण आपण मैंने जानती जे मसटा हूँ आषाढ़ मास हूँ सृष्टिर मास सृष्टि प्रक्रिया को आगे नापी महाप्रभु भाई भौणी को धरी रथजात्रा आसुचार गुंडीचा जात्रा आसुचार पतित पावन जात्रा आसुचार नौ दिन जात्रा करूँ जेतेबले पुरुष आयुध पुरुष जे कि चक्रराज जे कि श्रीमंदिर भितर भगवान जगन्नाथ।

0: प्रताप त्रिपाठी महोदय निवेदन करुची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
1: नमागई राज्य सुख नमागे मणि माणिक्य नमागे नयन निधि बरकामिनी जहांक चरितावली गांति चंद्र मौली पराण।

दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते सेई रथ उपरे जेतेबेले कला बामन आसी उपवेशन करिवे धन्य होइजीव जगत सेइति पाइत से माधवंकु श्रीमंदिरर सेई अणसर पिंडी निकटरे बसाई साक्षी रूपरे रखी सिए पळे आसीछंती बाहरकु आउ भाई भौणी चक्रराज सुदर्शनंकर पहंडी परे सर्वशेषरे महाप्रभु लीलामय नीलाद्रिष आसुछंती ढळी ढळी धन्य से रघु अरक्षित धन्य से राघव दास मठ जो परंपरा आदि सुंदर भाव उज्जीवित से जो दिन पुरस्रण करुले सिंहद्वार प्रचंड रौद्र प्रखर ताप एवं मध्याह्न समय रे महाप्रभु सही पारे भक्तर कष्ट तालपत्र छताटे आनी मुंड देखाई एवं किए छोट बाक जेतेबेले ध्यान भग्न हला रघु अरक्षितंकर सी चाहते जाणीपारे ना रात्र जेतेबेले शयन करी स्वप्न रे महाप्रभु हसी हसी कहते मुरा तुम पाखरे रही आउ से ऋण को सुझापी से टाहीआ मंडणी करुंती जगत जे पर्यंत थिव महाप्रभुंकर लीला जे पर्यंत रही थिव शाश्वत लीला रे सेई रघु अरक्षितंकर राघव दास मठ प्रदत्त से जो जरी जंबुरा कदम्ब पुष्प सदृश सोलरे तयारी होइतिबा कदम्ब कढ़ी से जो काठी गुड़िक एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर 37 गोटी काठी से 37 गोटी काठी रे 37 कदम्ब पुष्प रंगणी जरी जंबुरा चंपा मालती मल्ली आउ सबुठार उपरे रही अछि दुर्वांकुर हे श्रोता बंधु से दुर्वांकुर 108 दुबर जो समाहार सी सुंदर भाव ढली ढली आम को अवगत कराऊ जहाँ आम पूर्वर शुणुले तरोरीब सहिष्णुना तृणादपि सुनिचेन से कथा को से सूचाई देउछि मुसिना पाद तलर दुब थी आज शुद्ध स्वार मत संग्रह कर आनी दयनामी माली मत आनी यही जो टाहिया उपरे यही जो राघव दास मठ प्रदत्त ये टाहिया उपरे रही मु जगतर सर्वश्रेष्ठ हो जाइछि वास्तवरे जिए सेवा करे तार जीवन बासी उठे से धन्य हो जाए यही सेवा को अवलंबन करी आमर बाम पार्श्वरे एभली भावरे भक्त मानंकर भिड़ लागिछि केवल मुंड माळ एते वर्षा हेउथिले मध्य से माने आहत हो जाउछंती स्ट्रेचर रे स्वेच्छासेवी माने तांकु सेवा जोगाउछंती खाली पानी दियो बोली मागुछंती काहेकि ना एते भिड़ आपण माने अनुभव करि पारुथिबे तनो वर्षा करी महाप्रभु आदि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदन से महाप्रभु आदि वर्षा करने द्वारा अनेक परिमाण रे जो आहतर पूर्व रथयात्रा मानकर आम देखी थाए चलित वर्ष से घटना घटुना केवल वर्षा पाई तेणु वर्षा जमी श्रीक्षेत्र एक अंग हो जाते वर्षा हेब पूर्वर आपण मैंने शुणुले आमर वरिष्ठ घोषक डॉक्टर शांतनु कुमार रथ कहते जे चाष पाई बा ए चलित बर्षर जो रही परिवेश जेकि कम वर्षा रहीपाई महाप्रभु टिके वर्षा को निवेदन कर इंद्र को निर्देश देती निवेदन नुह निर्देश जे तुम्हें श्रीक्षेत्र बरसी जाओ मो रंग पछे धोई जाओ मो मुहर मो कलार ए जगत प्लावित हो जाऊ षोल कलार ए जगत पुण्य हो जाऊ आज से कथा देखा मिलूँ बड़ ठाकुर विराजमान तालध्वज रथरे मझीरे दर्प दलन माँ भगवती कांपिल वासिनी जग जोग माया सुभद्रांकर उपवेशन चक्रराज सुदर्शनंकर उपवेशन परे महाप्रभुंकर एई जो आगमन एई जो धीर पहंड पहंड जो आगमन ताहा त्रिभुवन को प्रकंपित करुछि श्रोता बंधु विश्व रहस्यर अनुपम प्रतीक हेउचंती महाप्रभु जगन्नाथ जहांक उपरे समग्र विश्वर लक्ष्य रही कौन है महाप्रभु जगन्नाथंकर क्षेत्र में कि लीला चली ये लीला को गोटी गोटी करी आज विभिन्न मध्यम साउटी नौचंती विभिन्न जाति धर्म वर्ण निर्विशेष श्रद्धालु माने आपण माने जानंती जो जात्रा रे

0: केवल मात्र यही यात्रा रे महाप्रभु को चर्मचक्षुरे स्वचक्षुरे अति निकटरे देखिबार सौभाग्य मिलुथिबारु समग्र विश्वरु कोण अनुकोणरु भक्त माने आसी जांती केवल यही रथ यात्रा को महाप्रभु दर्शन पाई ए जो परिवेशर ए जो घोष शब्दर सानिध्य पाइबा पाई विभिन्न प्रकार पवित्रता को अनुभव करिबा पाई से माने काय मन वाक्य रे ये परिवेश को निजर करंती काहिंकि ना आज आउ लुचि रही नाही श्रीक्षेत्रर वातावरण महाप्रभुंकर सानिध्य संपर्क आज कोण अनुकोण रे प्रवाहित होउची जेपरी समुद्र तरंग परि तेणु श्रीक्षेत्र को समस्तंकर आगमन परे ये होउची महाप्रभुंकर करुणा बारी तेणु इति अवसर रे हे श्रोता बंधु आपण मानंकु प्रथम केन्द्र को आमे नै जाउछु अति निकटरु सेठारु आपण मानंकु धारा विवरणी सुनिबार सौभाग्य मिलिव जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कि अपूर्व शोभा आमे देखिबाकु पाउछु समस्तंकर दृष्टि सिंहद्वार उपरि निबद्ध कारण वर्तमान बड़ ठाकुर बलदेव से तालध्वज रथरे आरूढ़ हो गले एवं देवी सुभद्रा मध्य से मध्य दर्पदलन रथरे आसीना एवं तांको सहित से ही चक्रराज सुदर्शन से मध्य से रथरे विराजमान कर सारी गोटे रथ नंदीघोष रथ जो नंदीघोष रथर नाम अनुसार ये जात्रार नाम घोष जात्रा है नंदी घोषरु घोष जात्रा तेणु ये घोषर जात्रा अर्थात नंदी को छाड़ी ये घोषर जात्रा घोष जात्रा एवं आउ गोटे अर्थ मध्य आमे काढ़ी पारिबा वर्तमान घोष को जात्रा घोष जात्रा घोष अर्थात गौड़पल्ली जो गौड़पल्ली रे गोपांगना माने अछंती से गोपांगना मानक सहित रासलीला करिबा पाई महाप्रभु प्रतिश्रुतिबद्ध एवं स्वयं महाप्रभु महालक्ष्मी को सांगरे ननेई नई जाउचंती से घोष को अर्थात से गौड़पल्ली को जोठी गोपांगना मानक सहित तांकर रास विहार हब आपण माने जानंती यही जो यात्रा काल रे महाप्रभु जेतेबेले सात दिन धरी गुंडीचा मंडप रे अवस्थान करिवे ये गुंडीचा मंडपटी होउची गोटे रासस्थली ये रासस्थली रे तीन दिन काल अर्थात सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीन दिन धरी महाप्रभुंकर रास उत्सव अनुष्ठित हब सेथिपाई श्री मदन मोहन से मध्य श्री जगन्नाथ महाप्रभुंक सहित जाउचंती एवं श्री मदन मोहनंकर निकटरे यही रास उत्सव अनुष्ठित हुए गोपांगना माने अपेक्षा करी रहिचंती एवं सेथिपाई महाप्रभु सांगरे महालक्ष्मी ठाकुरानी को न नै केवल जाउचंती कारण से स्थान रे रास उत्सव अनुष्ठित हब एवं आपण माने जानंती यही रास उत्सव सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीन दिन धरी काहीं अनुष्ठित हुए ना महाप्रभु जतेबेले जिबे गुंडीचा मंडप रे अवस्थान करिवे से समय रे यही श्रीमंदिर अधिष्ठात्री देवी माँ श्रीदेवी बा महालक्ष्मी ठाकुरानी से मध्य महाप्रभुंकर विरह को सह्य करी नपारी तांकु टिके साक्षात करिबा पई से मध्य जन्मवेदी आड़े जिबे हेरा पंचमी दिन से मध्य जाई सेठारे पहुँचे तेणु हेरा पंचमी रु से फेरिला पर दिन ही रास उत्सव अनुष्ठित हब वर्तमान आमे देखुचु से रास विहारी महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान आज 22.5 अतिक्रम करी माड़ी आसुचंती नीलाद्री सिंह जहाँ को कोटि कोटि जनता आज सारा विश्व रे अपेक्षा करी रहिचंती किए टीवी परदा सम्मुखरे अछंती को माने आमर बेतार केन्द्र बेतार जंत्र को आखि आगे रखिकी ध्यानमग्न होती आउ जो जनता एठाक आसी ये वर्षा को भ्रुक्षेप नक से माने अपेक्षा कर रही केतबले से ही चका चका आखिरे आखि को मिसेई देवे से हीपरा आमर एकमात्र संखाड़ी सी आमर एकमात्र धन

आउ कालिया सांते बाईसी पहाच अटकी जाइछंति जो बाईसी पहाच अत्यंत पवित्र जो बाईसी पहाच रे श्राद्ध कर्म करा जाय थाए पितृगण को पिंडदान करा जाए किंतु आज श्रीमंदिर बारण सत्ते सब आउ तेणुक जहाँ मंदिर बाहर ए सब जिनस होती अतीत से बाईस पहाच से आम आमर पितृपुरुष को पिंडदान करूँ आज से बाईस पहाच जो बाईस पहाच दे आम दर्शन करने सिंह द्वार धर्म द्वार बोली जहाँ को कह सिंह द्वार बाल्यकाल धर्म धन मु संचीवि ए जीवन अनिश्चित केजाणी कहार क्यों मूर्ति काल होइजीव उपस्थित बाल्यकाल आम धर्म संचीवा भगवान को पाइबा कारण मनीष जीवन में ताठ बड़ी आउ किछि नाही अनंत कोटीर ब्रह्मांडर ठाकुर अत्यंत सुंदर भाव रे प्रभुंकर लीला रे आज जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे धनी दरिद्र गरीब समस्त एकाकार हो जाइछंती खाली सेतिके नुहे देवता दानव एवं असुर से माने मध्य गोप्य भाव रे लुकायित भाव रे प्रभुंकर ए महान महोत्सव को दर्शन करिबा पई आसी जाइछंती आउ आमे देखुछु आहाहा कि सुंदर भाव रे से अरुण स्तंभ निकट को भक्त माने छुट्टी जाउछंती जो माने विभिन्न बेश रे निज को सज्जित करिछंती श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्य सख्य आत्मनिवेदनम से नवधा भक्तिर से सुंदर दृश्य को प्रभु निकट में समर्पित करदेउछंती कालिया सांतकर विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा जो कालिया सांते ब्रह्मांडर ठाकुर आउ एपटे बलभद्रंकर रथरे जो तालध्वज रथरे बलभाई बलभद्र विराजमान कर सारे माँ सुभद्रा सी मध्य विराजमान कर सारे सुदर्शन सहित संयुक्त होती से दर्प दलन रथरे आउ बर्षार प्रकोप एवं चली बर्षार से जो इंद्रकर वृष्टि एवं मध्य चली भक्त माने मध्य अपेक्षा करिछंती केते बड़े कालिया सांत आसिबे जहाँ को अति सुंदर भाव रे अच्युतानंद तांकर हरिवंश रे वर्णना करिछंती अनंत कोटि ब्रह्मांड जार गर्भेलिन जापाद चिंतंती जोगी ध्यान होई मग्न जहाँ करुणा करू तुहि भाव ग्राही सही तर पद पादे पद्म पादे बिलीन हुई हे अनंत ब्रह्मांडर कोटीर ठाकुर तुम्हें हौज कोटि कैबल्यनाथ गतिर गति आरतीर साथी पतित पावन प्रभु कमनीय नमनीयतार प्रतीक अभय अनंत निराकार निरंजन तुम्हें हौज से समस्त आर्त बंधु आर्तनम सकल आर्तिनाशनम श्री जगन्नाथ मिड़े लीलामय पुरुषंकर लीला अटकी जाइछंती अणसर खरे थिले आज बाहर होइछंती अणसर खरे थिलो आज बाहर होइलो टिके अणसर घरे थिलो किंतु आज कौन करिछ टिके आसुछ एवं जाउछ पादहुंडन करी दैतापति माने आपण को नै आसिसंती किंतु तथापि काही कि प्रभु आस आउ विलंब कर नाही प्रभु चली आस भक्त माने अपेक्षा करिछंती तुम्हें हेउछ जगतर ठाकुर जहांकर मुखर ब्राह्मण बाहुर क्षत्रिय उरुर वैश्य पादर सूत्र चक्षुर दिवाकर चंद्र कर्ण दयरु प्राणादि पंच वायु जिहारु अग्नि नाभिरु आकाश मस्तकरु स्वर्ग सृष्टि तुम्हें हौच से यज्ञ पुरुष जो यज्ञ पुरुष को देखिथिले स्कंद पुराण अनुसार सहस्र अश्वमेध यज्ञ समापन समय जतेबेले यज्ञर पूर्वरु से यज्ञ पुरुष को स्वप्न देखिथिले एवं तापर जतेबेले अवभूत स्नान करिबा पई जाइछंती सागर तीर रे आपण दारु ब्रह्म स्वरूप रे आसी थिले जो दार रूपे आसीबा पारे आपण को स्नान करा जाइथिला से स्नान थिला स्नान पूर्णिमा आविर्भावर दिवस आज से अणसर घरे रही आपणकर दार व्यतनु सुंदर भाव रे चर्चा हे सारीबा पारे आज आसीछंती अणसर घरु बाहर होई भक्त मानक पाखकु तुमे यज्ञ यज्ञास तुम यज्ञेश परात्परः शब्द ब्रह्म परम तुम ही शब्द ब्रह्मासि विश्वरा स्वराज सम्राट जगन्नाथ वीरा रसी जगतपते अधश्च उद्धर्च तिर्जक
त्वं तोया व्याप्तम जगन्मय आपण सारा जगत को पूरा व्याप्त कर रखिंट आपण हो विश्व

जगज्जननी कृपामयी माँ सुभद्रा ठाकुराणी एवं जगन्नाथंकर जो आयुध पुरुष चक्रराज सुदर्शन जेकि कली जुगरे धर्मर दंड धारण करिसंदि आज्ञा जिए भूल करिवो सीए दंड पाइब ठीक बाट को आस नचे ए संसार रु विदाय नब ये रोकठक भाव महाप्रभु ये ज्ञान आमको देइचंति कारण महाप्रभुंकर विचार होउची मानव चित बुका विचार मनीष भली आचरण उच्चारण मनीष भली खाती पियती शुंती एवं मनीष भली गाधाती ज्वर से पड़ती पंदर दिन धरिकी चिकित्सित हमें ये हूँ मनीषर गुण भगवान एटी देवता नुहंती मनीष भाव आसी लीला पुरुष महाप्रभु जगन्नाथ आज स्वयं दारु विग्रह रूपे पतित मानू तारिबापाई जो पतित कथा आम आलोचना करुले पतित मानू तारिबापाई पतित कहले जो माने मंदिर भितर को जापार ना से माने पतित नुहंती पतितर अर्थ हो मुक्तिकामी पापी पतित जाति वर्ण धर्म संप्रदाय निर्विशेष जो माने बड़दाण्ड को आसुचंती जो माने टीवी परदारे किंबा आकाशवाणी कटक केन्द्र मध्यम शुणुंती देखुं समस्ते होती पतित कारण जीए मर्त्य जन्म हम सी हूँ पतित ये जाति ना जहाँ पाखे जाति बड़ नुहे से होती जगतर नाथ जगन्नाथ से जगन्नाथ एभली एक भावर देवता अनुभवर देवता विश्वासर देवता ज्ञानर देवता केवल अनुभव ही जाने ये सेवक दीर्घ अर्ध शताब्दी धरी महाप्रभु जगन्नाथ महिमा महाप्रभु जगन्नाथ कृपा शिशु जब अनुभव करी ताकु समस्ते से ही बुझा दरकार से ही अनुभव करने दरकार से जो आम कौचे स्नान ए गुंडी चाबेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर एकमात्र महाप्रभु जगन्नाथ आसुचंदी स्वयं लीला करने स्वयं साक्षात करने कौ मान साक्षात करेंगे ना श्रद्धालु भक्त मानक साक्षात करेंगे कारण से भक्त प्रिय महादेव से कथा कुआ ठाकुर प्रत्येक मनीषर भक्तर अंतरात्मा को चिन्ही पारती तेणु लीला पुरुष महाप्रभु जगन्नाथ आज स्वयं दारु विग्रह पति दारु विग्रह स्वरूप पतित मानक तारिबापी श्रीक्षेत्र पावन पीठ से आज बड़दाण्ड को धीरे धीरे आसुचंदी कारण महाप्रभु होती वास्तव में पतित पावन एवं कपिल संहित जहाँ लेखा रही साक्षात वैकुंठ स्वरूप तत्क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम वास्तव में मर्त्य वैकुंठ हूँ मुक्ति मोक्ष प्रद क्षेत्र यही मर्त्य वैकुंठ से दारु रूपी पुरुषोत्तम नवधा वैकुंठ अधीश्वर तेना सिंहद्वार गुमुटे जो किसी समय अटकी गले कारण ताकि पतित पावन सिंहद्वार गुमुटर दक्षिण कांत भूवंशीय राजा रामचंद्र देव समय जो पतित पावन चित्र अस्थायी भाव अंकित होता केवल ताला परवर्ती समय जो माने अच्छव जो माने मंदिर भितर को जापार ना से माने आउ जापारी यही महाप्रभु को दर्शन कर मुक्ति मोक्ष पाइबे यहाँ कर दिगला किंतु जगन्नाथ पाखे जाति भेद ना वर्ण भेद ना धर्म भेद ना संप्रदाय भेद ना से होती जगतर नाथ दारु ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म जिते ब्रह्म संस्थापन हो जाए ना से सी देवतार परिणत हमती कथा कुआ ठाकुर परिणत हमती कारण ताखे धनी लोकटे लक्ष टा नहींदेले से खुशी हूँ ना से भक्त टे कह दे रे कालिया दे तोपा दे शरण दे तो बड़ दंड रे मोते जोगी टीए करी दे दे रे कालिया दे तेणु तो प्रत्येक मनीष भगवान को डाकुची प्रभु तो पादरे मते शरण दे तो पाखक मते नहीं जा मोर एतिकी ही कामना एतिकी ही गुहारी सब सबु भक्त माने जहाँ चाहती आमे मध्य आज आकाशवाणी कटक केन्द्र जो कार्यक्रम आपण मानक शुणु ता भितर भी आमर ये भक्ति भाव रोचे आमर ये विचारधारा रोचे जे सकल जीवजगतर रक्षा कर प्रभु सकल जीवजगत को उद्धार कर प्रभु समस्त को भल रख समस्त।

0: मम तुम्हें तुम्हें ही ताको रक्षा करिवो।
1: पवित्र रथयात्रारे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र, यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे।
2: ओडिसार प्रगति पथर जोडी हेउछि विकासर नुवा अध्याय। दूरता कमाई गांकु गां सह जोडुछि सेतु बंधन। छात्र छात्री प्रतिबंधक साजुनी बढ़ला नई जातायत तो हो सुगम सुगम ग्राम्य सड़क एवं दुआरे पहुंचुची आंबुलांस। गांव को बजार सह जोड़ुची प्रशस्त सड़क। चासीर फसल ठारु कुंभारर माटी हांडी सबुपाई खोलुची नुआ सुजोग। पर्यटन स्थली को सुगम करुची सड़क संजोग। बढ़ुची पर्यटकों आगमन। गाँ गाँव में लंबी उन्नत सड़क। दृढ़ हेउची विकासर भित्तिभूमि। समृद्ध हेउची ग्रामीण ओडिशा। सड़क सेतु ओ भित्तिभूमि विकास माध्यमरे पूरण हेउछि जशस्वी प्रधानमंत्रीक पूर्वोदय संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक मार्गदर्शन रे ओडिसार विकास पई प्रतिबद्ध ग्राम्य उन्नयन विभाग।
3: पुरीर बड़दांड केवल गोटे रास्ता नुहे,
4: एहा भक्त ओ भगवान को जोड़ीबार पथ।
3: एहि पथरे जाति नाही, धर्म नाही, परिचय नाही,
4: अछि केवल मनुष्य पणिया।
3: आउ जते बेले कहा पाई साहज्य रा हाथ बढ़े
4: ताहा ही हुए महाप्रभु का प्रतिश्रेष्ठ समर्पण।
3: सड़क दुर्घटनाग्रस्त जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनिछंती पीएम राहत योजना।
4: जेउठी अनुबंधित घर डाक्तरखाने रे 7 दिन जाय 1.5 लाख टंका पर्यंत रो चिकित्सा खर्च सरकार बहन करंती।
3: ओडिसा रो 798 घर डाक्तरखाना एही योजना रे पंजीकृत होईछंती।
4: सेही भली समस्त सरकारी डाक्तरखाने रे सड़क दुर्घटनाग्रस्त चिकित्सा संपूर्ण मागणा।
3: आसंतु मानवीयतार एही संकल्प रे सहभागी होई आमे भी बढ़ाइबा सड़क दुर्घटनाग्रस्त को सहायता राहत।
4: पवित्र घोष यात्रा रो हार्दिक शुभेच्छा।
3: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा द्वारा जनहित रे जारी।
0: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज समस्ते चिंतार पड़े जेहेतु महाप्रभु वर्तमान गुमुट मध्य विजय करईठ अटक रही जा घंट घंट घंटुआ मान घंट बजाऊंट बेले बेले सेमाने मध्य घंट को बंद कर दौंती कारण आउ घंट बजेबार भी शक्ति सामर्थ्य से मानकर नाही। कारण महाप्रभु जेते एते विलंब कले किए से पटुआर रे घंट बजेब तेणु से माने बहुत चिंतार पड़चंती। आम मैंने समस्ते चिंतार पड़चु एवं समस्ते गोटे मात्र आशा कर भगवान पाखे डाकरा दौंती कौन कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं बरस के थरे विजय रथ रे पतित तारीबा पाई कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं 14 ब्रह्मांड रुंड होई दर्शन करिबा पाई की 14 ब्रह्मांड रुंड होई दर्शन करिबा पाई की देवदासी नाच उकुट करंती दाता धीमी किटी थेकी कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं की गुमुटरे रही गल की कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं की बरस कथरे विजय रथरे बरस के थरे विजय रथरे पतित तारीबा पाइके कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं कालिया कान्हू आउ विलंब कर
5: प्रभु टाहिया मस्तकर उलारी हो जा कहीं कहीं जानी आज प्रभु की मान मारी जी मान।

0: आज आसुछंती जे 14 ब्रह्मांडर ठाकुर जे चारि अर्थ जे प्रदान करुछंती चतुर्वर्ग प्रदान करुछंती से कालिया शांत जे पंचकोशी जाए जने देखे जाए दर्शने कलमस हुई चुना 14 ब्रह्मांड करतांक लीला शंखनाभि क्षेत्रे विचित्र सुना ए शंखनाभि क्षेत्रे कालिया शांतकर जो विचित्र लीला लागिछि आउ भक्त एठि बड़ दाण्डरे ठिया होइ डाकुछंती आस प्रभु आस
1: बड़ दाण्ड रे भूली धरी हात रे झोली केते आतुर डाके तो तेरे जगन्नाथ जगन्नाथ रे जगन्नाथ जगन्नाथ
0: जगन्नाथ बड़दाण्डरे मु बाहु प्रसारी डाकुची प्रभु आस आउ विलम्ब कर नाही आउ विलम्ब कर नाही लक्ष लक्ष जनता आज आपणक दर्शन करिबा पई आपणकर से चका आखिरे निजर आखि को मिसेइ देबा पई अपेक्षा करिछंती लक्ष लक्ष श्रद्धालु आ नृत्यंगना माने आपणक पाखरे नृत्य को प्रदर्शित करिबा पई चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन माध्यमरे उदंड नृत्य माध्यमरे प्रेम भक्ति आपण को आपणे नेबार जो पंथा अवलंबन करथिले सेई पंथा को अवलोकन करी आज ऊर्ध बाहु होई भक्त माने आपण को डाकुचंती आस आस आमे मध्य देखि पारुचु प्रतिहारी सेवक जेपरी जोड़ी बेत धरिछंती जो बेत गौरी बेत बोली तांको कुहा जाए कहुचंती पाखे जा प्रभु आसिबे आउ विलम्ब करिबेनी आलोट चलीची चामर चलीची चारमाण सुसज्जित होइछंती सारथी अपेक्षा करिछंती तीन कोटि रथ जहाँकि सड़क बाबरे बड़दाण्डर से सिंह द्वार दंडायमान होइछंती आउ अनेक श्रद्धालु सहित आमर विभिन्न मंत्री महोदय ओडिशा ओडिशा बाहर एवं अनेक उच्च पदाधिकारी ऑफिसर माने मध्य आसिछंती आमे देखुछु आ कि सुंदर दिव्य भावरे वर्षा तो टिके टिके चालीछि सत वर्षार से प्रकोप कमी जाइछि किंतु एबे मध्य बहु प्रतीक्षार सहित अपेक्षा करिछंती श्रद्धालु आउ चारमाण पाखरे जो दयणामाली सेवक ବିନା ମାଳି ସେବକ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତୁଳସୀର ମାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଙ୍ଗଳାରେ ଧରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବେ କାରଣ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ନଟନାଗର ଖଟଖଟିଆ ଯାହାଙ୍କର ନାଟ ଏତେ ଭାବରେ ଯେ କିଏ ବୁଝିବ କାଳିଆରେ କିଏ ବୁଝିବ ତ ମା ମାୟା ତୋରି ମାୟାକୁ ବୁଝି ତ ନପାରିଲା ଯଶୋଦା ମା ଇଏ ଯଶୋଦା ମା ମଧ୍ୟ ତୋର ମାୟାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ପରା ତୁମର ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲ ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ କଳା ମୁଖ କଳା ସିଂହ ଯିଏ ଠାକୁର ଏଠି ଅନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ନିକଟରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହରିହର କାନୁନଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କର ଭାବନା କିପରି ଆଜିର ଏଇ ଭାବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
2: ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଅହଙ୍କାର ରଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାବଭକ୍ତିରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକିରି ସେବା ନ କରିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଇବ କାରଣ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି କ୍ଷମତା ଅଛି ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି ସେଭଳି ଲୋକକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ
3: जय जगन्नाथ। पवित्र रथयात्रा अवसर में समस्त श्रद्धालु और भक्तवृंद को हार्दिक शुभेच्छा। आपणक सुरक्षा और सुस्थता आमर प्रतिबद्धता। खोला बासी और माछी बसुवा खाद्य खातु ना तटका खाद्य खातु। विशुद्ध पानी जल व्यवहार करूँ। दीर्घ समय धरिकी खरारे रुहंतु ना। धला टोपी हाल्का पोशाक किंवा ओदा कपड़ा व्यवहार करूँ। यथेष्ट परिमाण में पानी किंवा ORS पानी पियंतु। छेप खंकार अड़िया आवर्जना को एणे तेणे न पकाई डस्टबिन रे पकांतु। पाइखाना व्यवहार करूँ। शौच पर साबुन में हाथ धुंतु। राति रे रहणी करूथिले मशारी किंवा मशा निवारक व्यवहार करूँ। निशा सेवन ठू दूरे रुहंतु। मुंड बुलेवा किंवा असुस्थ अनुभव कले विलंब नक निकटस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी किंवा स्वास्थ्य शिविर परामर्श नियंतु। वयस्क व्यक्ति शिशु गर्भवती महिला और भिन्नक्षम जत्न नियंतु। सुस्थ रुहंतु सुरक्षित रुहंतु।
4: राष्ट्रीय प्रगतिर भीति नारी को शक्ति विकसित भारत में समृद्ध ओडिशा महिला सशक्तिकरण को केन्द्र और राज्य सरकार विशेष गुरुत्व। महिला सशक्तिकरण जुगांतकारी योजना सुभद्रे महिला मिली आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एकीकृत ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजन योग्य हिताधिकारी सहायता। असुविधा थिबा महिलांकु तुरंत सहायता पाई महिला हेल्पलाइन नंबर 181। असहाय महिलांक पाई शक्ति सदन वन स्टॉप सेंटर पोषण अभियान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यम रे गर्भवती किशोरी प्रसूति और शिशुंक स्वास्थ्य को दिया जाउची प्राधान्य। प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा आमे पढ़िबा आम भाषा रे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरिया रे महिला और शिशुंक सर्वांगीन उन्नति पाई सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
2: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महाप्रभु ऋषि नहांती। महाप्रभु कहाँ पर रागी नहांती। आमर कहाँ पाखरे किसी दोष बा त्रुटि रही अहंकार रही दूर करंतु। लंब होकर महाप्रभु पाखरे दंड प्रणाम करी भूल मागंतु। समर्पित प्राण रे महाप्रभु को कहंतु हे महाप्रभु हे मणिमा हे जगतर नाथ हे दारु ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म हे कला शांत आपण आमको कृपा करंतु क्षमा करंतु। खाली कहिले हबो नाही निजर आचरण उच्चारण भितरे परिवर्तन हवा दरकार। विचारधारा रे परिवर्तन हवा दरकार। अहंकार शून्य नहले महाप्रभु घुंचिबे नाही। एवं जो माने रथयात्रा दायित्व रे अछंदी सेमानंकु ए सेवकर जोड़ा स्तरे विनम्र निवेदन आपण जाई महाप्रभु पाखे साष्टांग प्रणिपात करंतु। भूल मागंतु एवं जहाँ किसी घटना घटी ताकू दूर करने चेष्टा करंतु। वर्तमान मु एक प्रथम केन्द्र को मु नहीं जाऊँ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
5: श्रोता बंधु आपण पाखे बर्त आम जो तथ्य दौचु से तथ्यटी आमर प्रत्यक्ष ज्ञान उपर आधारित से ज्ञान प्रत्यक्ष कथा हूँ प्रत्यक्ष बरणी ना ये केवल आपण को इतनी आम सूचना दे पारू जे महाप्रभु सिंहद्वार गुमुट भितरे बहु समय धरी अपेक्षा कर रहा वर्तमान अरुण स्तंभ पाखे आमको दृश्यमान होती। दुखर कथा तार कारण कौन भी हो पाए आम तो कहीपरुनि आम गोटे केन्द्र में बसीचु धारा बरणी प्रदान करम पाखे कौन से अधिक सूचना पाइबार सुविधा भी आम पाखे ना किंतु महाप्रभुंकर मस्तक आज टाहिया ना जो टाहियाटा न रहिले महाप्रभु सहजरे आसंती ना बा महाप्रभु को टाहियाटा महाप्रभुंकर गोटे अविच्छेद्य अंग शरीर तेणु महाप्रभु मस्तक जो टाहिया ना कहीं टाहिया ना तार कारण आम आपको कही पारना वर्तमान आम कही पारना कहार दोष बा कहार व्यक्तिगत अहंकार व औदत्य जो ये घटना घटला आम केमी जानलु आम केवल अनुमान कर एवं अतीतर यह किसी दुर्घटना घटी यार दृष्टांत आम केवल आपको दे पारू यहीटा केवल अनुमान यह सत्य उपर आधारित नुहे जांच करने जाणीपाई आम पाखे कौन से साधन बर्तमान ना तेणु आम क्या आरोप करूना आम क्या आक्षेप करूना यारा बरणी मध्यम कारण धारा बरणी भाष्यकार भाव में आकाशवाणी कौन से अधिकार ना कौन से निर्णय नापाई ये दायी से सी दायी ये दंड पाइबा उचित ये सब कथा आमर कहार उचित भी नुहे कारण आमर से अधिकार ना किंतु आम केवल एतिकू जो महाप्रभु ये करती कारण साधारणतः आमर धारणा एवं साधारणतः आमर विश्वास

सहित जीवन को काल काल धरी बांधि रखिछन्ति से ही जगन्नाथ सत्य शिव सुंदर सोल कलार ठाकुर परिपूर्ण विग्रह नामरे नादरे से नाद ब्रह्म एवं शब्दरे से शब्द ब्रह्म आ दारु विग्रह स्वरूप हेतु सी होचंति दारु ब्रह्म से नाद ब्रह्म आउ किछि समय पर देखिबे दारु ब्रह्म किपरि नाद ब्रह्म रे परिणत हेबे अर्थात जेतेबेले रथ चलिब घर घर नादरे घोष दे भक्त मान को आह्वान करी समस्त भक्त को एककार करी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे ए श्रीक्षेत्र रो पटभूमि रे समस्त को एकाकार करिबा पई प्रभुंकर यात्रा जो यात्रा आज सकल तीर्थंकर आज मिलन घटी ए यात्रा रे खाली आमे कहिबा नाही ए यात्रा रे कौनसी व्यक्ति आमे निजे मध्य तार अहंकार को प्रदर्शित करि परिबा नाही कारण एडी गजपति निजे जत बेले समार्जना करिवे गजपति निजे जत बेले छेरा महरा कार्य करिवे जे कोटि राजार मौड़मणि गजपति दिव्य सिंह देव आउ किछि समय पर श्री नगर आसिबे मंगल अर्पण कार्य हम कारण जेमती जगन्नाथ महाप्रभु जेतेबेले बहंडी होई आसी मंगल अर्पण कार्य होइतिला ठीक सेहिपरि मंगल अर्पण गजपति महाराजांकर मध्य हम किंतु से गजपति सेवक ये गजपति नुहंति कारण मने पड़े गोपबंधुंकर सेई कथा उत्कलर नेता नहीं प्रयोजन उत्कलर नेता स्वयं नारायण एडी नेतांकर कौनसी नहीं एडी केही प्रजा समस्त एक राजा प्रजा पथ रथ सब होची केवल गोटिए मात्र होची कौन ना भाव भक्तिर भक्तंकर सेई भाव आ किछि नहीं ता छड़ा कारण जो ठाकुर आज पताका डाकुछन्ति नीलचक्र रे एबे मध्य सही सुंदर भाव रे हळदी रंगर पताका फरफर हे उडुची एवं डाकुछ पंचकोशीरु समस्त भक्त को डाकुछन्ति पत

0: राजा जे कि राउतर राजपुत्र होती जो राजा आज छेरा पहरा करे ये एक पारंपरिक विधि तामजान जाऊँ जोध्रुवेशर जाऊँच धला पोशाक मस्तक शिरस्त्राण आगरे जो छती तरास बजंतरी बाजा देउलकरण सहित जाऊँ राजगुरु सहित जाऊँ पारिषद वर्ग राज नर पारिषद वर्ग सहयोग जाऊँ जोड़हस्त हाथ जोड़ी प्रभु को दर्शन करने सहित जगतर कल्याण पाई जगतर मंगल पाई जाऊँ गजपति महाराज ये एक सांस्कृतिक परंपरा 1970 मसीहार 2026 दीर्घ 56 वर्ष है महाप्रभु जो महाप्रभु जो सेवा करुचंदी ये एक अलभ्य सेवा कारण राजा एवं प्रजा जे समान साम्यवादर समाजवादर मानववादर देवता होती महाप्रभु जगन्नाथ एठी समस्ते समान थिबारु गजपति महाराज जो जोड़ हस्त अति अनुनय विनय पूर्वक निउछाली होकरी आज जगतर कल्याण पर जो अनुकूल पाग परिवर्तन जो प्रतिकूल पाग चली इंद्र देवता आकाश रे थाई जो पुष्पवृष्टि करुचंदी से पुष्पवृष्टि को खातिर नक श्रद्धालु भक्त माने असंख्य भक्त माने बड़दाण्डे रुंड होती बड़दाण्ड आज जनाकीर्ण आम भावुले जे बोधे आज अल्प लोक हे अल्प आसबे किंतु देखा जाउची जे प्रभुंक दर्शन पई श्रद्धालु भक्त मानक भितर केते आवेग केते उत्कंठा तेणु पाट छत्री तले मेहनारे बसी रथ पर्यंत आसुचंती गजपति महाराज सौम्य दर्शन गजपति मस्तक शिरस्त्राण देहरे श्वेतरंगर चूड़ीदार पंजाबी उपरे उत्तरीय जगन्नाथंकर चलंती प्रतिमा होती गजपति महाराज एवं से जो छेरापहरा कार्य करे ताकि चंडाळर कार्य देवतार सेवाकर्म राजा चंडाळर भेदभाव नाही गजपति राजांकर उन्नत राजकीय मस्तक अवनत हो जाए महाप्रभु पाखे तेणु ये भंडार मेकअप जो देवे ये पारंपरिक विधि विधान जो कार्यक्रम ताठी सूचाई दौची जगन्नाथ संस्कृति में समस्ते समान समस्त जो सामान अधिकार रही राजा एटी चंडाल बेस जो छेरापहरा कार्य करे ये भक्त जनतार कलकल्लोल जमी बड़दाण्ड आज प्रकम्पित हो उठुची मणिष एक धर्म एक छेरापहरा ये मैत्री बोधर प्रतीक यही गुंडीचा महोत्सव पारमार्थिक महाभाव स्मारक यही पवित्र छेरापहरा तेणु छेरापहरा प्रमाण कर जे अवतारी पुरुषंगर सृष्टिलीला एवं सकारात्मक तत्वलीला अवकाश रे पुण्यपीठ बड़दाण्ड रे राजा प्रजा शासक शासित साधारण असाधारण क्षेत्रीय चंडाल समस्त समान समस्त पार्थिव सत्तार परम ओ श्रेयधर्म होउची सेवा बोध जो सेवा को उल्टे देले बासे वर्तमान मु प्रथम बूथ को वर्तमान निवेदन करी से वर्तमान परवर्ती धारा विवरणी प्रदान करने पर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: धन्यवाद डॉक्टर हरिहर कानून महोदय आपणकर बूथ सामने द्वितीय केन्द्र सामने गजपति महाराजा श्रीनगर गजपति महाराजा से बाहर आपर धारा बरणी दे सी तुरंत आम आड़े चली आसे तेणु द्वितीय केन्द्र रु प्रथम केन्द्र को आम धारा बरणी आणलु ये कारण वर्तमान गजपति महाराज आम सम्मुखे विराजमान अच्छा मेहना वर्तमान तालध्वज रथर चारमा तले उपस्थित अच्छा गजपति महाराजा जो सेवा करती सेवाटी प्रकृत रे गोटे भगवान को पाखरे सेवार कौन सी बाछ विचार न थाए बा पटातर न थाए तेणु आपत देखुं ये जो 119 प्रकार सेवा वर्तमान अच्छी से 19 प्रकार सेवा भितर आपणकर कोठ सुहांसिया भू सेवक जो मैंने काठ बुहामुही करती जो मैंने चारमा बांधती अतीतर जो मैंने रथ को पेलुले रथ को टाणुले से भाया सेवक को ठू आरंभ कर आपणकर मंदिर उपरे बाना बांधा चुनरा सेवक एवं कोठ सुहांसिया सेवकों पर्यंत सेवक मैंने अच्छा से पूजा पंडा।

0: तरबारी खंजा है जमी राजा जड़े आसवा कथा से आसु किंतु सेवा कर सामान्य लोक भाई सेवा कले तेणु यहीटा जो श्रीक्षेत्र महाप्रभु पाखे है समग्र विश्व गोटे अन्य उदाहरण कौटे आप देखु तो अनेक जगार आम जमी आम गजपति महाराज को चलती विष्णु बोली कहचु सेमती अगर जगार चलती विष्णु बुलंती भगवान बोली एमती कौन कौन अगर राज्यर राजा मानतेहरी घर वाल गोटे अच्छी आउ कौ राज्य अच्छी से राजा मानकमें जमी गजपति को चलती विष्णु बोली कहचु से कह जाए किंतु कही यही सेवा महाप्रभु पाखे करती ना यहीटा हूँ गजपति महाराजा अनन्यता आ गोटे कथा मुझे कहबी जे ए राज्य जितेबले गंगवंशी मैंने शासन कले कौन जो अनंग भीम देव समय मंदिर संपूर्ण है से अनंग भीम देव समय आप चारिड़ शत्रु आक्रमण होता दक्षिण पटु उत्तर पटु मुसलमान मान अफगान मान आक्रमण होता तेणु आपत भावतु जदि यह गोटे परिस्थित थी कौन सी राजा गोटे राज्यर मंगल कर कि सबुब शत्रु भय तर र सबुब शत्रु मान प्रतिहत करने तार समस्त शक्ति सामर्थ्य से व्यय कर प्रजा मान कल्याण के तेणु ये छतीसा निजोग यही मंदिर ये सेवा पूजा ये सब कथा करने के कष्ट तेणु आपत भावतु से ही अनंग भीम दिव से ही दिन ठार महाप्रभु पाखे निजक राउतपण से समर्पण कर ए राज्यर राजा हूँ श्रीजगन्नाथ एवं ए राज्यर प्रकृत जी राजा होकर कार्य तुलाउंट सी तर सेवक यही कथाटी सी सारा भारत में प्रचार करने फल दक्षिण देशर जोठू हिंदू राजा मान पटर विपद थिला से हिंदू राजा माने से कथाटा को बुझिले अरे अरे उड़ीसा राज्य यहाँ ए राज्यर राजा जगन्नाथ हूँ ए राज्यर राजा एवं ए राज्यर प्रकृत राजा हूँ सेवक राउतपण से सेवा करे बड़ पीठ एड़े बड़ संस्कृति संपन्न धर्म आचार पूर्ण ये राज्य उपर आम आक्रमण करवानी जहाँफल दक्षिण पटर आक्रमणटा प्रतिहत है प्रतिहत हबार राजा जतक बल था जतक सैन्य सामंत सब थे से सबको लगे से उत्तर पटु जो पश्चिम बंग पटु जो प्रकार अफगान मानक आक्रमण होता से आक्रमण में समस्त शक्ति लगे आक्रमणकारी मानक तड़ीदे यहाँ है इतिहास एवं से ही दिन से द्वादश शताब्दी ठारु ये राज्यर राजा निजक राउतपण से महाप्रभु चरणारविंद समर्पित कर दिन सेवा कर
1: पवित्र रथयात्रारे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रही वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पाई ओडिशार विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एथिसहित अतिरिक्त टिकेट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पाई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपणंक सेवारे
2: ओडिशार प्रगति पथरे जोड़ी हेउछि विकासर नुआ अध्याय। दूरता कमाई गां कु गां सह जोड़ुछि सेतु बंधन। छात्र छात्रीक प्रतिबंधक साजुनी बढ़ला नई जातायत तो हेउछि सुगम सुगम ग्राम्य सड़क एबे दुआरे पहुंचुछि आंबुलांस। गाँ को बजार सह जोड़ुछि प्रशस्त सड़क। चासीर फसल ठारु कुंभारर माटी हांडी सबु पई खोलुछि नुआ सुजोग। पर्यटन स्थली को सुगम करुछि सड़क संजोग। बढ़ुछि पर्यटकंक आगमन। गाँ गाँ रे लंबिछि उन्नत सड़क। दृढ़ हेउछि विकासर भित्तिभूमि। समृद्ध हेउछि ग्रामीण ओडिशा। सड़क सेतु ओ भित्तिभूमि विकास माध्यमरे पूरण हेउछि यशस्वी प्रधानमंत्रीक पूर्वोदय संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक मार्गदर्शनरे ओडिशार विकास पई प्रतिबद्ध ग्राम्य उन्नयन विभाग।
3: मशाबाहित रोग डेंगू मलेरिया एवं जापानी ज्वर हेउछि आम राज्यर मुख्य मशाबाहित रोग।
4: वर्षा ऋतुर आरंभ ओ शेष उभय समय मशा वंश वृद्धि निमन्ते अनुकूल परिवेश सृष्टि हुए ओ एई तीनोटि रोगर प्रादुर्भाव बढ़ी जाए।
3: एथिरु रक्षा पाइबा पई घर चारिपाखरे ओ घर भितरे कौनसी स्थानरे सात दिनरु अधिक समय पानी जमि रहिबाकु दियंतु नाही।
4: पानीकु धरि रखुथिबा भंगा डब्बा सढ़ेइ अव्यवहृत हांडि टायर आदि नष्ट करि दियंतु।
3: घर पाखरु बणबुदा सफा करंतु।
4: नाळ नर्दमारे ओ खालुआ स्थानरे जमि रहुथिबा पानी रे मशा निरोधक औषध पकाइबाकु स्वास्थ्य कर्मचारी बा पौर कर्मचारी को सहायता करंतु।
3: दिन हेउ बा राति सोइबा बेले मशारी व्यवहार करंतु।
4: शरीर को जथा संभव अधिक ढांकिबा भली पोशाक पिंधंतु।
3: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।
5: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपनकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत

जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान गजपति महाराजा श्री श्री दिव्य सिंहदेव बलभद्रंकर तालध्वज रथरे राजनीति बा छेरापहरा नीति संपन्न करी से वर्तमान जाई श्री जगन्नाथ महाप्रभु निकट को नंदीघोष रथ को घन घन वीर काहली बाजुच जेहेतु वीरत्वर प्रतीक तेणु गजपति जोबले जुआड़े जीवे सीटी वीर काहली बाजिब से जो छेरा पहरा सेवारे वीर काहली बाजुच तेणु वीर काहली रे आपण जानती जो वीर काहली रे गोटे उपाख्यान अच्छी किंवदंती अच्छी जोबले गजपति पुरुषोत्तम देव जाइले कांची राज्य को सेतेबले से सांगरे तांकर काहलिया को लेकरी जाइथिले एवं काहलिया सेठारे जाई जेतेबले आसीचंती उत्कलर सम्राट गजपति पुरुषोत्तम देव सेतिपई से गोटे बजेई देले वीर काहली टिके किंतु किंतु याको ऊपर क्षुब्ध थिले कांची राजा शालुअ नरसिंह तेणु से जमा ये कार्य को पसंद कले नाही से जानुथिले जे तांकर कन्या पाई पुरुषोत्तम देव अयोग्य से ताको ऊपर क्षुब्ध थिले एही समय रे जते बेले काहलिया जाईकरी काहली बजेई देला सेते बेले से रागीकरी काहलिया ठारु से काहली टिकु नहींकरी ताकु तीन गड़ करी काटिकरी पकेई देले ए कथा जे जते बेले काहलिया देखिला जे ये काहली होची महाप्रभुंकर संपर्कित तेणु ये हूँ उत्कलर वीरत्वर प्रतीक तेणु शालुअ नरसिंह जोबले काटिकी पकईदे से काहलियार मनरे बड़ क्षोभ जात है दुख जात है से चिंता कले सांगे सांगे आखि आग को पलिशे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान कहले प्रभु मुझे आपणकर जड़े सेवक होती आपण प्रति मोर निष्ठा थी मु वर्तमान यही जो तीन खंड में विभक्त होता काहलीटी को जोड़ी आपण ना बर्तमान फुंकी दौची ता बाजी उठू सत को सत जोड़ी देकरी जोबले से बजेदेले से काहलीटी बाजिगला तेणु वीरत्वर प्रतीक भाव ये काहली से दिन प्रमाणित करदेला उत्कल जो राजा अच्छा से राजा होती संपूर्ण वीर एवं तांकर समस्त राजकीय कार्य वीर काहली बाजिब से ये वीर काहली से दिन ठारु यार महात्म्य आउ टे बढ़ीगला आपण मैने जानती गजपति महाराजा सी हो राजा लक्ष राजार मौलमणि कहार तात्पर्य होेतु तर सेवा टिकक ये सेवा से करम ब्रह्म परमात्मा पाखे से सेवा करुले याकर पूर्वपुरुष अर्थात गंगवंशी राजा शासन जोबले 1435 ख्रीष्टाब्दे सरीगला 1435 ख्रीष्टाब्दे गजपति कपिलेन्द्र देव जोबले राजत्व आरंभ कले कपिलेन्द्र देव ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु निकटने संपूर्ण भाव समर्पित हो जाते जहाँ कहा जाए 18टा हाथी पीठे दाक्षिणात्य विजे करी सुना रूपा बोही आनी श्री जगन्नाथ को मध्य से राष्ट्र देवता भाव ग्रहण करपिलेन्द्र देव महाप्रभु पाखे सेवा करने मनस्थ कले से गोटे सुंदर सेवा से करुले जहाँकि मानने सिंहद्वार ठार आरंभ कर रथ पर्यंत जो दांड से दांड को से ही परिष्कार करुले एवं परिष्कार परिच्छन करी पानी छिंची जो मार्ग देकरी महाप्रभु रथ को विजय करिवे से रथ मार्ग को से परिष्कार करुले ओलौले ये थिला तांकर सेवा एवं ता प्रताप रुद्रदेव मध्य ए कार्य करुले बोली चैतन्य चरितामृत ग्रंथरे स्पष्ट भाव उल्लेख करा जाइछि तेणु सूर्यवंशी राजा माने ए

0: प्रदान करा जिबार व्यवस्था करा जाई छी।
1: एही योजना विषय रे अधिक सूचना पाइबा पई आपनको निकटस्थ अंगनवाड़ी केंद्र रे जोगाजोग करंतु।
0: अधिक सूचना जानिबा पई महिला ओ शिशु विकास विभाग रो वेबसाइट wcd.odisha.gov.in रे लॉगिन करंतु। महिला ओ शिशु विकास विभाग द्वारा जनहित रे जारी।
2: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानक सुविधा पई ओडिसा रे विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचल रो घोषणा करा जाय छि। एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र, यात्री सहायता केन्द्र और स्टेशन मानक यात्री मान सुरक्षा पाई विशेष व्यवस्था करा जाय छि। पूर्वतट रेलपथ आपण को सेवारे।
3: पछे जले विद्युत नाले जल दाने घन बाध्य सुख तेजी राजा तोषिवे परजा तेबे तो परमाराध्य। श्रोता बंधु वर्तमान भगवती माँ सुभद्रांक रथरे गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव छेरा पहरा करुछंती। आगरे चालिछंती राजगुरु जी मंत्रपाठ करुछंती। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणी सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवह। एवं जो घटुआरी आगेरे अछंती जे चंदन सेवा करती चंदन घोरी मंदिर प्रतिटी चंदन लागी को से चंदन जोगांती से रूपा पिंगन रु चंदन छेरा को छिंची देउचंती रथर चारिपटे स्वर्ण मार्जनी को धरी से शुक्ल पुष्प एवं छेरा को पहरी देउचंती आदर सहित गजपति दिव्य सिंह महाराज। आपण माने अनेक कथा सुनुथिले ए आद्य सेवकंकर विषय रे। वास्तव रे आमे माने आम परंपरा को नहीं एते महनीय जीवन जापन करुछे तनो परंपरा वर्तमान सेई जो छेरा पहरार जो स्वर्ण मार्जनी अनेक सेवायत माने सेई परिवेश रे मुंडरे लगेई दउछंती काहेकि ना केते अहोभाग्य सेई झाड़ूटीर जो थे परम ब्रह्मंकर से पवित्र दिव्य रथर स्पर्श बा छेरा पहरा करागला। त्रिखंडिका काहाली विषय आपण माने सुनुले आमर जे करुले वरिष्ठ घोषक डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय। तेणु ये सब हूँ आमर परंपरा कौन सी समय रे भूल हो पारना। आज गोटे विचित्र कथा देखा मिली प्रायतः व्यक्तिगत अनुभव रु मु कहिबि 32 वर्ष धरी ए रथयात्रा को देखि आसुथिले मध्य आदि जो प्रकार रे सकाळ समय रु मात्र 2 घंटार पाग सुखिला थिला किंतु संपूर्ण भावरे वर्षा सिक्त सेवा आदि महाप्रभुंकर कौन रहिछि लीला सेथिरे प्रतिटि सेवायत एपरिकि ए जो वृद्ध बयस थिला जो वयोवृद्ध जगद्गुरु शंकराचार्य से मध्य तीन रथरे सेवा करिबा समय रे पुष्पांजलि देवा समय रे ओदा वर्षा रे भिजी भिजी सेवा करुथिले। वर्तमान गजपति महाराज से तीन रथर भिजी भिजी वर्षा रे अति प्रबल मात्रा रे मेघ से मेघ रे से सेवा करुछंती। देखंतु आद्य सेवक भिजुचंती महानायक छतीसा निजगर महानायक सी मध्य भिजुचंती आउ समस्त सेवायत माने कौन कहिबे कहाकु कहिबे नियतिर जो इच्छा ता विरुद्ध रे आमे माने साधारण मनीष आमर कौनसी नाही व्यवस्था आमे नियति को विरोध करि परिबा नियतिर प्रतिकूल रे जाई परिबा। तेनु से हेउचंती जेपरी तांकर आशीष रे सुंदर ए धरा कुहा जाइछि प्रभु तुमरी आशीष से सुंदर ए धरा। तेणु ये तांक आशीर्वाद रे सब जहा आमे करिबा ताहा ही सर्वश्रेष्ठ कार्य बोली आमको विवेचना करिया पड़िबो। सुंदर पुष्प राजी रे मंडणी होइथिबा से दर्प दलन रथ को सर्व लक्षण संपन्न जो रथ रे सारथी अछंती अर्जुन एवं जो रथरे माँ भगवती स्वयं जोगमाया त्रिभुवन जननी सूक्ष्म रूपा जगत जननी माँ सुभद्रा बसी छंती तांक पाखरे

0: तमे आमर दुख बुझ सब दुख दूर कर दियो एई भावना नै
1: 12 मास 6 ऋतु एवं 1 वर्ष अपेक्षा करिछि भक्त को दिन आसिबो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि से तिथि को से तार निजर समस्त कार्य को से दूरई देछि एवं मु श्रीक्षेत्र जीवि श्रीक्षेत्र रे रहिबी श्रीक्षेत्र रे एई एई कार्य सब करिबी
0: जीवी
1: मु क्षेत्र जीवी एई क्षेत्र को आसिबा पई तार जो व्याकुलता थिला से वर्तमान से पाई तार प्राणप्रिय ठाकुर को केते कथा मनरे भाभी दौछि आउ श्रीमंदिर जो मेघनाद पाचेरी से कड़े कड़े अनेक श्रद्धा भक्त माने ये दिव्य लीला को दर्शन
0: करुछंती
1: आउ बड़दांडर दुई उभय पार्श्वरे जो कोठा गुड़िक अछंती सेठारे मध्य तल उपर सबु स्थान रे श्रद्धालु माने आबाल वृद्ध वनिता से माने महाप्रभु दिव्य लीला को दर्शन करुछंती। वास्तव रे श्रोता बंधु आपण माने अनुभव करुथिबे ये साधारण जीवन रो साधारण परिवार रो परिवेश रो जेतेबेले वैकुंठ रे आसी सेई परिवार रो सदस्य जने पहुंचि जाए तार जो आनंद हुए तार जो मनरे जो व्याकुलता सृष्टि हुए सेई कथा ही आज बड़दांड रे देखिबा को मिलिछि। संपूर्ण परिपूर्ण बड़दांड केवल मुंड माळ भक्त मानंकर जो प्रचेष्टा रही आमे महाप्रभु को आग को नेबु आउ वर्तमान टिके ठीक मझी आड़ को आसुचंती बड़ ठाकुर तेणु बड़ ठाकुर पाखरे कोटि कोटि प्रार्थना हे नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। से महाप्रभु बड़वाड़ सामंतंकर से कला रंगर घोटक चारिजण से माने मध्य आश्चर्य होउचंती अरे पागल अरे भक्त माने एमती काहेकि होउच पार्श्व देवता माने से माने मध्य आनंदित होउचंती अरे ठाकुर को देखिया पई एमिति तमे होउच आउ जे सारथी अछंती मातळी से मध्य अबाकबा हो जाउचंती अरे भक्त मानंकर कौन ये भावना समस्तंक भितरे आउ जी असिचंती रथाधिप महाप्रभु जी बलभद्र आ रामकृष्ण सी तो भक्त को पाई सी मध्य विहोल भाव विहोल हो जाउचंती कर्तुम अकर्तुम अन्यथा बा कर्तुम से महाप्रभु तुम पाखरे कौन बा असंभव कौन बा असंभव सुंदर भाव
0: केड़े सुंदर भाव रे घोर घर घर नाद रे चतुर्थी का प्रकंपित करी श्रद्धालु भक्त माने टाणी नौचंती प्रभु को प्रभु रथ चलुची रथ छुईबा पई केते आकुलता केते व्याकुलता भक्त प्राण रे जो सम्मोहन प्रभु को देखिबू प्रभु रथ जो टाणीबू मनस्कामना पूरण करिबू ए जो भाव ए जो श्रद्धा ए जो विश्वास आज सृष्टि हो बड़ा
1: नजाबत उमानाथ पादारविंद भजंती हलोके परे नराणाम नतावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम। हे प्रभु जे पर्यंत तुमर चरणारविंद रे आम मन मज्जी न जाइछि लग्न न होइछि से पर्यंत आमर मुक्ति काही तेणु उमानाथ हे महारुद्र हे बलभद्र हे रुद्र स्वरूप तुम परम ब्रह्म दारु ब्रह्म तुम चरण रे आमर मति रहु आमर गति रहु आम जीवन रो सबु समय रे तुमे आशीर्वाद रो मुद्रा रे आमको अभय मुद्रा रे बरद मुद्रा रे आमको रक्षा करू था हल मुसल महाप्रभुंकर से होती आयुध आपण माने जानती अहं वैश्वा नरभूत्वा प्राणी नाम देह माश्रित आउ भगवान कहते जे मु हे अर्जुन मु तुम उदर रे वैश्वानर हो रही मात्र उदर रे जो

ये जो विकसित होइछे जगन्नाथ संस्कृति एवं जो चेतना विकसित होइछि से चेतना वर्तमान विश्व चेतना आपण जानते श्रोता बंधु महाप्रभुंकर गोटे बड़ गुण होउछि बा जगन्नाथ संस्कृति गोटे बड़ महान संस्कृति होउछि जे समावेशी संस्कृति जा जोहा को आम इंग्राजी आज कल इनक्लूसिविटी बोली कहूँ जे इनक्लूसिव कल्चर बोली कहूँ से महाप्रभु जगन्नाथंकर देढ़ हजार दि हजार वर्ष जिते बड़े जगन्नाथ संस्कृति उपासना है महाप्रभु को उपासना है से सर्व जन समावेशी गोटे संस्कृति ये विकसित होती जो समस्त को लेकर विश्व चल समस्त को लेकर आम चल यो विचार जहाँ गोटे आधुनिक विचार बोली आम कहूँ से आधुनिक विचार आदौ नुहे से गोटे सनातन विचार एवं से ही सनातन विचार महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र में प्रदर्शित होती प्रमाणित होती प्रतिष्ठित होता कम बड़ कथा नुहे तेणु आज से घोष यात्रा अवसर में यही बार्ताटा समग्र जगत को जाऊँ एवं आकाशवाणी गोटे परम सौभाग्य जे 1948 मसीह आरंभ कर 2026 मसीहा 79 वर्ष धरी सुदीर्घ 79 वर्ष ये गोटे आयु काल ठारूरी अधिक दीर्घ तेणु गोटे आयु काल को अतिक्रम कर गोटे दीर्घ काल धरी गोटे अनुष्ठान रथजात्रार धारा बरणी शुणी चली आपण मानू तेणु आपण मान श्रद्धा अनुराग नथिले कौन आकाशवाणी कथा करता जदि आपण मैंने शुणु न था आपण मैंने शुणिकी मतामत दौन था आम जो ह्वाट्सअप आपको देखे ह्वाट्सअप्रे आपणकर के श्रद्धा अच्छी केते आनंद अच्छी आकाशवाणी प्रति केते अनुराग अच्छी जे आपर आमको प्रश्न पचारूँ आमर सीमित विद्याबुद्धि भितर आम आपण प्रश्न मानकर समाधान करने को चेष्टा करो अंतरंगता आकाशवाणी और श्रोता मान भर जो अंतरंगता से अंतरंगता ही आकाशवाणी को 1948 मसीह 2026 मसीहा पर्यंत टाणी आना मु भावुची जो पर्यंत समय थिबो जो पर्यंत अनुष्ठान माने थिबे जो पर्यंत श्रोता माने थिबे जो पर्यंत बेतार यंत्र थिबो से पर्यंत आकाशवाणी महाप्रभुंकर ए महार्घ लीला को आपण मानक पाखरे पहुंचेबार सुजोग केबे मध्य हाथ छड़ा करिवे नै एटा गोटे परम आशीर्वाद महाप्रभुंकर आकाशवाणी आमे तो सामान्य मात्र आम सब आज अच्छू काली हुए तो किए नथिबु किंतु आकाशवाणी गोटे अनुष्ठान भाव में जो सेवा जो समर्पण भाव में ये सेवा निरंतर भाव में निरवच्छिन्न भाव में दे आसी आपण माने होचंती तार प्रतिभागी एवं आपण जानती केवल गुंडीचा यात्रार धारा बरणी होता 2015 मसीह बाहुड़ा यात्रार धारा बरणी आकाशवाणी प्रसारण कर 2015 को 2026 11 वर्ष हो गला बाहुड़ा यात्रार धारा बरणी आपने शुणुं तेणु यही जो धारा बरणी शुणाऊँ आकाशवाणी जो उद्यम करुच्ची जो परिश्रम करुच्ची एवं जो प्रचेषा करुच्ची से प्रचेषा पछरे जो मानकर अवदान अच्छी से माने होचंती आकाशवाणी जो माने अभियांत्रिकी विभाग जो माने इंजीनियरिंग विंग बोली आम जहाँ कहूँ से इंजीनियरिंग विंग रो पदस्थ कर्मकर्ता सहित समस्त कर्मचारी वैषयिक सहायता ये प्रदान जो माने करिसंती से माने होचंती सर्वश्री जशोदानंदन संजुलता नायक सुरेन्द्रनाथ गिरी जयदेव जेना सुभाषिष राजगुरु महापात्र संबित पसायत मिहिर कुमार सामल फुलचांद सिरका विजित कुमार मिश्र कृष्ण दयाल त्रिपाठी शंभुनाथ बेहरा आउ जो आकाशवाणी कार्यक्रम विभाग जीए यही धारा बरणी को संचालन करती धारा बरणी को माने देवे चयन ठारू आरंभ कर धारा बरणी किभली निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से अति सुंदर भाव में श्रोता मानते पहुँचव तार परिकल्पना एवं संचालन जो माने करती से माने जयकिशोर नागर दुर्गा माझी दिलीप कुमार नायक विनय कुमार सामंतराय प्रज्ञा पारमिता साहू राजीव कुमार महंत सद्यस्मिता बेहरा आउ जो माने आमर आज यही महाप्रभुंकर पावन रथजात्रार धारा बरणी आपण पहुँचे सी होती मो सहित अच्छा डॉक्टर नरेश चंद्र दास डॉक्टर कल्याणी नंदी सेपटे द्वितीय केन्द्र में आम डॉक्टर हरिहर कानुनगो प्रताप त्रिपाठी एम समस्ते दिन सारा एवं दीर्घ दिन अध्ययन जारी रखी आज महाप्रभुंकर तथ्य तत्व भाव इतिहास ये सबको आपण मानी पहुँची पहुँचाई एवं ए भितर जदि कौन से जगह किसी त्रुटि भी हो जाइए ताको आपण उदार हृदय क्षमा करेंगे एवं परवर्ती समय रे पत्र माध्यम रे ताहा आकाशवाणी को जनइले आम परवर्ती समय रे संशोधन करने को मध्य चेष्टा करूँ मोर प्रार्थना आपण मान पाखे रे मु आकाशवाणी परिवार जड़े व्यक्ति 2017 मसीह सेवानिवृत्त होगापर एवं जड़े बाहर लोक भाई आसिले आकाशवाणी परिवार मते श्रद्धा करती मुझे आकाशवाणी परिवार समस्त सदस्य को असीम श्रद्धा करे तेणु मोर परिवार भीतर को मुझे तेणु मुझे आपण को

0: ଏତିକି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିପାରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ମତାନ୍ତର ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣମାନେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ, ଜଣେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ଏ ସଦ୍ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଜାରି ଏଇଭଳି ରହିଥାଉ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଚାଳନ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଟଣାର ଧାରା ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସମୟରେ ଚାଲେ, ତେଣୁ ଆକାଶବାଣୀରେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସମୟ ହେଉଛି ଆକାଶବାଣୀର ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ସେହି ସମୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆକାଶବାଣୀ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ସମୟ, ଛଅଟା ପରେ ଆକାଶବାଣୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଛଅଟା ବେଳେ ଏହି ଧାରା ବିବରଣୀ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୀମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆକାଶବାଣୀଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀର ଶ୍ରୋତାବର୍ଗଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମର ଧାରା ବିବରଣୀ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
1: ଶୁଣୁଥିଲେ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଧାରା ବିବରଣୀ। ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଡକ୍ଟର କଲ୍ୟାଣୀ ନନ୍ଦୀ, ଡକ୍ଟର ହରିହର କାନୁନଗୋ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ।
2: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलिनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक सातवें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: श्रोता मैंने कार्यक्रम सुनुछंते आकाशवाणी कटक केन्द्र रो सुनंतो आज प्रचारित होबा गुतेबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना। तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर 80 भाग सकल संध्या 6 बजे 10 मिनिट रे विकास मंत्र संध्या 6 बजे 30 मिनिट रे इथरे आज रहिचे आकाशवाणी बरमपुर केन्द्र प्रस्तुत कार्यक्रम राति 7 बजे 2 मिनिट रे ओडिया कथाचित्र गीतर कार्यक्रम जिला हालचाल रे संबलपुर जिलार हालचाल राति 7 बजे 25 मिनिट रे कृषि संसार राति 7 बजे 30 मिनिट रे एथरे विषय रहिछि खरीफ धान फसल रे जैविक उपाय रे रोगपोक दमन ए संपर्क रे आलोचना करिछन्ति तापस रंजन साहू। राति 8 बजे 2 मिनिट रे हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम रेडियो विवरणी सुनिबे रथयात्रा संपर्क रे राति 8 बजे 15 मिनिट रे राति 8 बजे 30 मिनिट रे ओडिसी गीत कंठशिल्पी नीलिमा पंडा राति 10 रे प्रचार करिबो महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे श्री गीतनाट्यर श्रीगुंडीचा प्रसारण श्रीगुंडीचा रचना एवं प्रयोजना

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं

0: वसमानः कश्चिदपि नागरिकः राष्ट्रस्य मुख्यधारातः विच्छिन्नः कदापि न अनुभवेत्।
1: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और वीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि वीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: सर्वोच्च न्यायालय अद्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रमांतर्गत नवम कक्षायां तृतीय भाषाया समावेशं प्रति महतीं चिंतां प्रकटितवान्। न्यायालयेन सप्रश्रयम् अवलोकितं यत् एतेन नवमश्रेण्याः कोमलमति छात्रेषु मानसिक भारः नितरां वर्धिष्यते। न्यायालयेन श्लाघनीयो परामर्शः दत्तः यत् इयं भाषा पञ्चमकक्षायां षष्ठमकक्षायां वा प्रवर्धनीया, येन छात्राः सुलभतया तां ग्रहीतुं समर्थाः स्युः। न्यायाधीशयोः वी बीर नागरत्नायाः आर महादेवनस्य खण्डपीठेन केन्द्रप्रशासनं प्रति मौखिकरूपेण आदिष्टं यत् नवमकक्षायां तृतीयभाषायाः नवीनः भारः छात्रेषु न आरोपणीयः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair.gov/newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ओडिशा राज्यस्य पवित्रायां पुरी नगर्याम् अद्य उत्कृष्टाध्यात्मिकोत्साहः वरीवर्ति। विश्वप्रसिद्धा भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा अद्य धार्मिक विधि विधानैः अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबन्धैः च सह महता आध्यात्मिकोत्साहेन समनुष्ठीयते। प्रातःकालादेव तीर्थनगर्यां निरन्तरं जायमानां वृष्टिमतीत्य लक्षाधिकाः श्रद्धालवः अविचलितश्रद्धया मुख्यमार्गे एतत् पवित्रं दृश्यं साक्षात्कर्तुम् उपस्थिताः। जय जगन्नाथ इत्याख्यैः गगनभेदी जयघोषैः सह भगवान् जगन्नाथः, भगवान् बलभद्रः, देवी सुभद्रा, भगवान् सुदर्शनश्च पूर्णविध्यनुसारं स्वस्वरथेषु विराजिताः। अनेनैव सह पारम्परिकः पहाण्डी बिजे इत्ययं कार्यक्रमः सम्पन्नः। अस्य विश्वप्रसिद्धमहोत्सवस्य सुचारु सुरक्षित सञ्चालनाय सार्वत्रिकी सुरक्षाव्यवस्था, जनसम्मर्द प्रबन्धनं सहैव आपात्कालीन सज्जाः पूर्णरूपेण विहिताः। ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे अद्य भगवतः जगन्नाथस्य पावनी रथयात्रा समाचर्यते। अस्मिन् पुण्यावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च देशवासिभ्यः हार्दान् शुभाशयान् प्रकटितवन्तः। देहली उच्च न्यायालयः अद्य मानव जीवनम् अत्यन्तम् अमूल्यं वर्तते इति तथ्यं सविशेषं प्रतिपाद्य सामाजिक कार्यकर्तुः सोनम वांगचुकस्य स्वास्थ्यस्य प्रतिदिनं सूक्ष्म निरीक्षणं विधातुं सम्बद्ध अधिकारिणः समादिशत्। श्री वांगचुकः सम्प्रति नवदेहल्याः जंतर मंतर प्रांगणे अनिश्चित कालं यावत् अनशने निरतो वर्तते। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य अथ न्यायाधीशस्य तेजस कार्या इत्यस्य खण्डपीठाभ्यां दृढं व्याहृतं यत् प्रशासनीय चिकित्सकैः श्री वांगचुकस्य स्वास्थ्य स्थितेः नियमितरूपेण परीक्षणं करणीयम्। केन्द्रप्रशासनस्य देहली प्रशासनस्य च पक्षतः उपस्थापितः महाधिवक्ता तुषार मेहता न्यायपीठस्य पुरतः न्यवेदयत् यत् प्रत्येकस्य नागरिकस्य जीवनं देशाय बहुमूल्यं वर्तते, अतः वांगचुकस्य नियमित चिकित्सकीय परीक्षणे प्रशासनस्य कापि विप्रतिपत्तिः नास्ति, अपितु पूर्ण सहमतिः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां प्रवासाय निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेल यानाय हरित पताकां प्रदर्शयिता। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंद नगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 7,14,000 करोड़ रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य कीर्तिमयी क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य स्वकीयं एकं सर्वोत्कृष्टं प्रदर्शनं विहितवती। चीन देशीयां क्रीडिकां हान युए इत्येतां पराजित्य जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्य चरणे ससंभ्रमं प्रविष्टा। भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये द्वितीया एक दिवसीय स्पर्धा अद्य सांप्रतं कार्डिफ नगरे जायमाना वर्तते। इति वार्ताः।

आकाशवाणी कटक आरंभ करुचु कार्यक्रम विकास मंत्र प्रयोजना सिद्धार्थ शंकर महारणा उपस्थापना सुकांति महांती आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रस्तुत।

0: आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन अतीश कुमार शतपथी जुहार। पहला मुख्य खबर, श्रीक्षेत्र पूरी न चली महाप्रभु श्रीजगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। रथयात्रा अवसर लुक्कु शुभेच्छा जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। पाताली श्रीक्षेत्र आर फटली सहित पश्चिम ओडिशार भिन्नभिन जगन हो रथयात्रा। ओडिशा साट अमृत भारत स्टेशन एवाकेल शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। और लघुचाप प्रभाव थी राज्य भिन्नभिन जगन लग रही बर्षा। एथर पूरा खबर, श्रीक्षेत्र पुरी न एस महाप्रभु श्रीजगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा होउछि। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ बड़ भाई श्रीबलभद्र भौणी सुभद्रा और सुदर्शन को सांगे नेकुरी नौ दिन लगे श्रीगुंडीचा मंदिर के घोषयात्रा जाउछन। ठीक समय थी महाप्रभु मानकर पहंडी मूल होते बिल दिन अढ़े बजे तक पहंडी शेष होता। ऊपर बेला पांच बजे पहला श्रीबलभद्र तालदौज रथ घीचा मूल होता। तार उतर देवी सुभद्रा दर्पदल रथ घीचा मूल होता। घंट शख हरिबोल हुलहुल भितर भक्त मैंने दुई रथ के घीची घीची नौछन। श्रीजगन्नाथ नंदीघोष रथ एत बल तक नुए घीचा हुए। रथ उपर बसीथार महाप्रभु मान दर्शन करवार लगे पूरी बड़दाण्ड न लाख लाख श्रद्धालु भीड़ जमीचे। ये बाबदे आकाशवाणी संबलपुर संवाद विभाग तरफ गोटे रिपोर्ट।
1: कोटी कोटी ओडियांकर आराध्य देवता श्रीजगन्नाथ रत्नवेदी नु जन्मवेदी के नौ दिन लगी यात्रा थी बाहरी छन। टाहिया होलेगिरी भक्त मानकर भित्रे विजे करिछन श्रीजगन्नाथ, श्रीबलभद्र आउ देवी सुभद्रा। भक्त भगवान दिव्य मिलन सहित बड़दाण्डन भक्तिमय परिवेश लागि रहिछे। अषाढ़ मासर उज्जवल पखर द्वितीय तिथि दिन आज चक्रराज सुदर्शन बड़ महापुरुष श्रीबलभद्र, महाप्रभु श्रीजगन्नाथ आउ देवी सुभद्रांकर मानवीय लीला के सारा ब्रह्मांड दर्शन करुचे। नीति निर्घंट अनुसार आज सकाल नौ बजे तीन रथ के प्रतिष्ठा करा उतरु साढ़े नौ बजे महाप्रभु मान पहंडी मूल होता। चतुर्ध मूर्ति पहंडी आसिकी रथ उपरे विजे करते महाप्रभु मैंने रथती विजे हेला उतरु श्री श्री मदनमोहन, श्रीराम आउ श्रीकृष्ण को रथ उपरे विजे करा उपर बेला चिता लगिकी बेश कराई गजपति महाराज दिव्य सिंह देव तीन रथ उपरे छेरा पहरा करते तार उतरु चारमाल फिटा घोड़ा आ सारथी खंजा जाइला। तार आगु पूरी गोवर्धन पीठर मठाधीश जगदगुरु शंकराचार्य बिल रथ उपरे महाप्रभु मान दर्शन करते बेलबुडर पांच बजे पहला श्रीबलभद्रं तालध्वज रथ घीचा मूल होता। पछे पछे देवी सुभद्रा आउ श्रीजगन्नाथ रथ घीचा जाता। रथघीचा काम आउ आनुषंगिक रीतनीति के श्रृंखलित भाव परिचालना करवा लगी श्रीमंदिर प्रशासन तरफ खास पदक्षेप नियाजाइछे। झिपिर झिपिर वर्षा थी आज सारा श्रीक्षेत्र भिजिछे। घंटा शंख ध्वनि थी बड़दाण्ड उछली पड़ी। इतार सहित जय जगन्नाथर गगन भेदी ध्वनि भितरे बड़दाण्ड हिचे भक्तिर महातीर्थस्थल। आकाशवाणी संबलपुर संवाद विभाग तरफ मुई सुप्रीति मिश्र।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रथयात्रा अवसर देश विदेश रहुथबार श्रीजगन्नाथ भक्त को शुभेच्छा जनईन। राष्ट्रपति कहीन भक्त और भगवान मिलन रही पर्व पृथ्वी नीरले ये महापर्वती महाप्रभु श्रीजगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र देवी सुभद्रा आउ चक्रराज सुदर्शन सहित रथ उपर भक्त मानक दर्शन देसन। ई अवसर राष्ट्रपति भगवान पाखे देशवासी सुख समृद्धि कामना कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेच्छा जनकरी कहीछन इटा भारतीय कालजयी आध्यात्मिक सांस्कृति रही गोटे अनन्य अभिव्यक्ति है। रथयात्रा संगे जोड़ी होतीबार परंपरा भारत पृथ्वी पीढ़ी उतरु पीढ़ी के प्रेरणा दूचे। इटा विनम्रता, सामूहिक भागीदारी आउ निस्वार्थपर सेवा के प्रतिफलित करसी प्रधानमंत्री कहीछन। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अवसर राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्बम पाटी सारा पृथ्वी नथिबार जगन्नाथ प्रेमी को शुभेच्छा जनाबार सहित समाज नईटा शांति, मैत्री, प्रेम आउ भातृभाव प्रतिष्ठा साहज करू बोली कहिछन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महाप्रभु श्रीजगन्नाथ रथयात्रा अवसर राज्य लुकु आ पृथ्वी चारिआड़े थिबार महाप्रभुंकर भक्त आउ श्रद्धालु मानक शुभेच्छा जनाबार सहित ओडिया जातिर आराध्य देवता महाप्रभु श्रीजगन्नाथ आशीर्वाद थी राज्यर विकास सहित सबकर जीवन सुख शांति आउ समृद्धि भरी जाऊ बोली कहिछन। श्रीक्षेत्र पुरी सहित आज राज्यर गाँ सहर सबुन रथयात्रा होउछे। श्रीजगन्नाथ अनन्य दिव्यलीला क्षेत्र सुवर्णपुर जिला पाताली श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर नीतिकांति और परंपरा अनुसार रथयात्रा होउछे। त्रिकुट पर्वतर छलिया शिखर मंदिर न चतुर्था मूर्ति को सेवायत मैंने धाड़ी पंडिती शह आठ पहुँच उतरे करी बड़दाण्ड के आनी थे आर महाप्रभु मानक रथे विराजमान कर तार उतरु रथघीचा मूल हो। সম্বলপুর আর রেড়াখোল সহর সহিত জেলার ভিন ভিন জাগান রথযাত্রা হচ্ছে। সম্বলপুর ঝাড়ুয়াপড়ার ব্রহ্মপুরা মহাপ্রভুঙ্কর পহণ্ডি উত্তর বাকিপড়া মানুষ মহাপ্রভু মানুষ পহণ্ডি করা যাইছিলা। রথ মানকে মহাপ্রভুঙ্ক ঠানে ভাত খুয়ানি হয়ে সারিথিবার ছুয়া মান রথছুয়া বিধি করা যাইছিলা। তার উত্তর কেন যোগ চালি আসুথবার পরম্পরা অনুসারে বড়সড়ক কে সবা আগে ব্রহ্মপুরা মহাপ্রভুঙ্ক রথ উত্তর বাকিপড়ার রথ মানকর ঘিচা চালিছে। বরগড় জেলা ভটলি ন দধিবাবন মহাপ্রভুঙ্ক নবগুঞ্জ রথযাত্রা মূল হয়েছে। এ সকাল বেলা মহাপ্রভুঙ্ক পহণ্ডি করি করি রথদাণ্ডকে নিয়ে যাইছিলা। মঙ্গল আলতি আর ছোট ছোট ছুয়া মানক রথ ছুঁয়া উত্তর রথ ঘিচা যাইছিলা। বৌদ্ধ ন উপর বেলা রথ ঘিচা মূল হয়েছে। জগন্নাথ মন্দির ন সকাল বেলা মহাপ্রভুঙ্ক পহণ্ডি করি করি রথকে অনা যাইছিলা। দেবগড় জেলার ভিন ভিন মন্দির সহিত সহরর শ্রীজগন্নাথ মন্দির থিয়া সকালু মহাপ্রভুঙ্ক পহণ্ডি করা যাইকি রথটি বিরাজমান করা যাইছিলা। পরম্পরা অনুসারে বেলবুড়ে সন্ধ্যা আলতি উত্তর সর্বসাধারণ দর্শন করা যাওয়া আবাকেল আর পরদিন রথঘিচা হওয়া। নয়াপড়া জেলা খড়িয়াল মঝিয়াগুড়ি ঠানে চতুর্ধা মূর্তিঙ্ক রথযাত্রা হয়েছে। খড়িয়াল রাজা দেবদেব সিংদেও ছেড়া পহরা উত্তর বড়দাণ্ডন রথঘিচা হয়েছে। পরম্পরা অনুসারে খড়িয়াল ঠানে দেবী সুভদ্রাঙ্ক রথকে মহিলা ভক্তমানে ঘিচিথিস।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भोज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भुर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
0: जी। श्रोताओं, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोज पत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओं, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
0: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
0: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी। यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
0: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
0: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
4: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
4: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
4: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
4: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
4: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
4: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
5: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
5: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
5: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
5: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
5: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
4: जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी,
4: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
5: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
3: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे।
5: बिल्कुल दिनेश जी,

0: कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
1: अच्छा
0: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
2: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
0: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
0: जी,
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण भैया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी,
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
1: जी,
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
1: जी,
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी,
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी,
1: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका

0: अभी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम।
2: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने अपने किताबें निकालो, चलो चलो अपने अपने पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश, है गोपाल, इसको बोलो, मेरी तरफ देखिए, शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी जी जी,
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी,
1: बेटा आगे तुम पढ़ा।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो। चलो चलो शाबाश।
2: गंदे
3: पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पार्ट पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, ठीक से पीछे जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
5: अच्छा
6: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश भाई। बच्चों तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
6: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
6: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना

0: दोनों कक्षाओं के अंतर को। पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
1: दीदी
2: बोलो मालती।
1: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
2: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
1: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
2: ठीक।
1: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
2: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
1: जी।
2: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
1: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
2: हाँ।
0: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की यह शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
3: नमस्ते दीदी। नमस्ते,
4: नमस्ते, नमस्ते बच्चों। नमस्ते
2: दीदी। ये
4: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
5: दीदी ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
4: अच्छा
5: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
4: सच? प्रवीण इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
2: गुलाब।
4: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
3: दीदी मैं बताऊंगी।
4: नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
2: गुलाब। गेंदा।
4: हाँ
2: चमेली। और
4: हाँ
2: चमेली।
4: चमेली।
2: सूरजमुखी।
4: सूरजमुखी, शाबाश।
0: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
4: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
0: जी।
4: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
0: जी जी।
4: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
0: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
4: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
0: बहुत अच्छे।
4: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौट कर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में

0: से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
1: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा उनसे
1: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं, इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोता बंधु आपण शुणुले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज शुणिले यार 1329 भाग। आकाशवाणी राउरकेला आरंभ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ।
4: मशीन में लुगा पकड़ा पूर्व चेक कर
3: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु। जदि बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओम्बड्समैन पाखरे अभियोग करंतु। आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु, सतर्क रहंतु।

हम साथ साथ हैं ए फिल्मर गीतट शुणिले गीतटी कंठदान करते हरिहरन घनश्याम बासवानी प्रतिमा राव एवं संतोष तिवारी गीत रचना रवींद्र रावल संगीत सजाई राम लक्ष्मण आकाशवाणी राउरकेला स्टूडियो घड़ी समय बर्तमान रात 8:45।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार

0: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ

लीजिए सुनिए आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की, फिल्म का नाम बेमिसाल।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में सुना। संगीत तैयार किया था आडू बर्मन ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाली।

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थीं। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

This one, let me do the dip. साल 2012 में कैटरीना कैफ ने फिल्म अग्निपथ में काम किया और इस फिल्म में ये गाना उस साल खूब खूब चला।

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आकाशवाणी राउरकेला शुणुले विविध भारती कार्यक्रम। परवर्ती कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केन्द्रु शुणा गीतिनाट्य श्रीगुंडीचा, रचना और प्रयोजना शारदा प्रसन्न नायक, संगीत भुवनेश्वरी मिश्रा।

0: यही तो मोर परमाराध्य पितृदेव ब्रह्मा त्रैलोक्यनाथ विष्णु सहित कौन सी एक गुरुतर आलोचन बोध हुए निमग्न अंतराल रही आग शुणे आउ एक अपूर्व लीला अवलोकन करार अभिलाष जगिला प्रभु नारायण नारायण नारायण।
1: हे त्रैलोकनाथ विष्णु, बराह अवतार धारण करी प्रलय पयोधि जलरु बसुमती को तुम उद्धार कर ओ मते पुणी चराचर सृष्टि करने को कह तुम निर्दोष पुणी सृष्टि कल तुम माया तो समस्त को अगोचर विष्णु ए महाप्रलयर समस्त प्रसंग वर्णना करी मोर समस्त संशय दूर कर ओ सचराचर जीवकूल मुख्यर उपाय कण कह प्रभु।
2: हे वेदपति, ए संसार तुम्हें सृष्टिकर्ता पुणी तुम्हें त्रिकालदर्शी तुमको कौन अगोचर तथापि स्नेहर आतिशच्य मो तुंड जब शुणा को चाहू तेब कहूँ शुण

0: धैर्य धर इंद्रदुम्न घेन हे सांत्वना शोक त्याग कर मनु जाउछि मु श्रीहरि को पासे पचारिबि तांकु एही कुटर कारण
1: जाओ हे देवर्षि तुमे न फेरिबा जाय अपेक्षा रे बसिथिबु आमे दुहे एही नीलगिरि तळे शोकातुर अश्रु नयन
0: नारायण नारायण नारायण

वृद्ध एक प्रवेशिले विश्वकर्मा बेसरे वृद्ध एक प्रवेशिले विश्वकर्मा बेसरे कहिले कौन कहिले पंदर।

0: श्री श्री श्री गजपति पुरुषोत्तम देवंकर जय हे।
1: महामंत्री, श्रीगुंडीचा यात्रा निकट हे आसिला। महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपारु एथरक समस्त शुभ अनुकूल करि रथर निर्माण कार्य आरंभ करा जायछि। वैशाख मास शुक्ल तृतीया रोहिणी नक्षत्र दिन मु संकल्प करथिले, आ सेय अनुसारे समस्त कार्य सुचारु रूपे संपादित हेइ उपयुक्त रथ काठ संग्रह करा हेइछि। मु अत्यंत प्रीत जे वर्धकी गण सुंदर भावरे बड़दाण्डरे रथ निर्माण करुछन्ति। एहि मनोरम यात्रा रे कांची राज जेमा पद्मावतींक सहित परिणय सूत्रे आबद्ध हेइ मोर नीलाद्री बिहारींकर सेवा करिबार वासना जागृत हेइछि।
0: गजपति अनुमति देले मो कांची राजांग निकटकु विवाह प्रस्ताव देइ दूत पठेइबि।
1: पठन्तु महामंत्री, दूत शीघ्र संवाद बहन करि आणिले विवाहर आयोजन करा जिवो। जय जगन्नाथ।

जाओ तू तो कोला आप करो नहीं ओ जले चंडालन रोपति रो कि निर्लज प्रस्ताव लज्जा नहीं तम गजपति पुरुषोत्तम देव रथ ऊपर चेरा पहरा करी जे चंडालन कार्य करे तार की हास्यास्पद प्रस्ताव कांची राज देवा पद्मावती रो पानी।

0: स्थान आज माणिक पाटना ना मारे विख्यात हब
1: ना ना ना मोर आ किछि लोडा ना मुझे जेति पाइछि सत्य के मोर सब प्रभु
0: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ

दोस्तों, जिंदगी कभी भी खाली हाथ इंतजार नहीं करवाती है। हर ठहराव के पीछे एक सीख होती है, हर देरी के पीछे एक बेहतर मंजिल छिपी होती है। इसलिए अगर आज रास्ते सुनसान है ना, तो घबराइए मत, चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कदम रोकते नहीं है, चाहे साथ कोई हो या ना हो।

दोस्तों, बहार सिर्फ मौसम में नहीं आती, बहार तो रिश्तों में भी आती है। जब हम एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलते हैं ना, तो एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। याद रखिए, अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन मिलकर चलने वाले लोग बहुत दूर तक पहुंचते हैं। एकता में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसान बना देती है।

दोस्तों, धन दौलत शोहरत और शरीर सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और मीठे बोल समय की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद भी लोग कहें इंसान चला गया, मगर उसकी बातें आज भी दिलों में जिंदा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।